0: আকাশবাণী কলকাতা, গীতাঞ্জলি। একটু পরেই সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহত নাজ। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्क द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
2: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
1: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पून को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल है। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV F-17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. EOS-05 is a state-of-the-art Earth observation satellite and India's first imaging satellite from geosynchronous orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared, multispectral and hyperspectral bands. The satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. Government has constituted a 31-member joint committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel to examine the FCRA Amendment Bill. Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartruhari Mahtab, Tejaswi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harshvardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menaka Guruswamy have been included in the committee. Both Houses of Parliament on 12th August gave nod for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has sent two more aircraft with relief material to Nepal to support ongoing relief and rescue efforts in flood-affected areas. External Affairs Ministry said both C-130J aircraft carrying 21.5 tons of humanitarian assistance landed in Kathmandu. The relief material was handed over to Minister for Science, Technology and Innovation Mahabir Pun. The Ministry of Home Affairs will make available services of Central Forensic Science Laboratories, State Forensic Science Laboratories and Laboratories of the National Forensic Sciences University for DNA profiling of first-degree biological relatives of missing persons from India following the flash flood in Nepal. Ministry of External Affairs said first-degree biological relatives residing in India may have their biological samples collected and DNA profiles prepared at certain facilities. As advised by the Nepal Police, autosomal STR DNA profiling may be undertaken for the purpose of identification subject to the technical requirements communicated by the Nepali authorities. The helpline number in this regard is +977 9841 616095. The DNA profiles along with the preliminary information required by the Nepali authorities may be sent to email to dnacodis@nepalpolice.gov.np for comparison with DNA profiles obtained from unidentified mortal remains. Festival of Janmashtami, which marks the birth of Lord Krishna, is being celebrated across the country today. Devotees throng to the temples to offer prayers to Lord Krishna. Mathura and Vrindavan in Uttar Pradesh is fully geared to celebrate the birth of Lord Krishna. Thousands of temples, including Banke Bihari Temple, Prem Mandir, ISKCON Temple and Shri Krishna Janmabhoomi Temple, have been tastefully decorated in Mathura, the birthplace of Lord Krishna. In women's cricket, India stormed into semi-final of 2020 Asia Cup, defeating Hong Kong by 137 runs in their second Group A match in Dubai last night. And that is the end of this news bulletin.
4: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের মিডিয়াম ওয়েব 297.6 মিটার অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। এখন শুনবেন আজ অর্থাৎ 4 সেপ্টেম্বর 2026 শুক্রবারের অনুষ্ঠান পরিচিতি সম্পর্কে। প্রথমে গীতাঞ্জলির প্রথম অধিবেশনে সকাল 6:30 আজকের চাষবাস, জাতীয় দৃষ্টি সপ্তাহের গুরুত্ব বলবেন মেঘলা সেন, 6:40 আপনার স্বাস্থ্য অপুষ্টির কারণে দৃষ্টিহীনতা বলবেন স্নেহা ভৌমিক, 6:45 প্রাত্যহিকী উপস্থাপনায় হৈমন্তী দে শুভদীপ দে, 7:45 রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনায় সুসৌমী মাইতি, 8:00 জানা অজানা মায়ার সভ্যতায় বিজ্ঞান চর্চা শুনবেন প্রথম পর্ব বলবেন দীপঙ্কর বসু, 8:05 নিরাময় দৃষ্টিহীনতার কারণ ও তার প্রতিকারে বিষয় বাইরে থেকে অনুষ্ঠানটি রেকর্ড করে এনেছেন সুস্মিতা ঘোষ, 8:20 গান্ধী চর্চা গান্ধীজির বৈষ্ণব ভাবনা বলবেন ইভা ভট্টাচার্য, 8:30 শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সেতার পণ্ডিত অসীম চৌধুরী, 9:00 গানে গানে বাংলা ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান শুনবেন প্রথম পর্ব, 9:25 সমীক্ষা, 9:30 গানে গানে দ্বিতীয় পর্ব, 10:00 গানের ভেলা উপস্থাপনায় সুতপা চট্টোপাধ্যায়, 11:00 যুববাণীর অনুষ্ঠান মগজ মিটার উপস্থাপনায় অর্ণব চক্রবর্তী এবং সায়নী মজুমদার, 12:00 সঙ্গীতালেখ্য জন্মাষ্টমী রচনা রমেন চৌধুরী, ভাষ্যপাঠ গৌরী ঘোষ, সঙ্গীত পরিচালনা বিজন পাল, সম্পাদনা বিশ্বনাথ দাস, 12:33 উনজমি দুনো ফসল, 1:00 গীতিকা একক শিল্পীর গানের অনুষ্ঠান, 1:45 মহিলা মহল কাজের খোঁজে উপস্থাপনায় সোমা সাহা, 2:30 সাঁওতালি অনুষ্ঠান সাঁওতালি গান কাপুমণি হেমব্রম সহশিল্পীবৃন্দ, এরপর ন্যাশনাল টেকনিক্যাল টেক্সটাইল মিশন প্রসঙ্গে বলবেন দ্বিজপদ সরেন, এরপর শুনবেন লোকগীতি পরিবেশনায় শ্যামচরণ মান্ডি, গীতাঞ্জলি দ্বিতীয় অধিবেশনে বিকেল 5:00 ক্রীড়াঙ্গন উপস্থাপনায় সৌম্যদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঠে ময়দানে অনুষ্ঠানটি বাইরে থেকে রেকর্ড করে এনেছেন অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, 5:30 বিদ্যার্থীদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ে পাঠদান করবেন বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুলের শিক্ষক শুভঙ্কর ভট্টাচার্য, সঙ্গে থাকবেন 2 শিক্ষার্থী, 6:05 সাঁওতালি অনুষ্ঠান সাঁওতালি গানে শ্যামচরণ মান্ডি ও সহশিল্পীবৃন্দ, 6:15 সাঁওতালি অনুষ্ঠান চক্ষুদান সম্পর্কে সচেতনতা এ বিষয়ে ডাক্তার সন্তোষ কুমার সরেনের সাক্ষাৎকার শুনবেন।

चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राज तिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्या वासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदर पूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

Mm-hmm.

0: वरिष्ठाः न्यायिकनेतारश्चापि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अयं मञ्चः सहभागि न्यायाधीशानां मध्ये संवादाय अथ न्यायवितरण अन्ताराष्ट्रिय विवाद समाधान प्रौद्योगिकी सतत विकास चेत्येतेषां सम्बद्धानां समकालिक प्रकरणानां विषये विचार विनिमयाय अवसरं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः सूर्यकान्तः उद्घाटन दिवसे विभिन्नानां न्यायिक प्रतिनिधिमण्डलानां प्रमुखैः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकोपवेशनानि करिष्यति। भारतेन नेपाल देशस्य जलाप्लाव प्रभावितेषु क्षेत्रेषु प्रचलितेषु सहायोद्धार कार्येषु सहायतां कर्तुम् आपदुद्धार सामग्री समेत्य द्वे विमाने पुनः प्रेषिते। आपदुद्धार सामग्र्यः नेपालस्य विज्ञान प्रौद्योगिकी नवोन्मेष मन्त्रिणे महावीर पुन इत्यस्मै समर्पिताः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे अतिवृष्टेः सम्भावनां दृष्ट्वा नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। महिला क्रिकेट क्रीडायां संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीय स्पर्धायां भारतं हांगकांग दलं 37.1 धावनांकैः पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनोसिस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जाँच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एनरी सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया।

0: किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्वारिका में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने चीन की हांगकांग टीम के विरुद्ध महिला क्रिकेट एशिया कप के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Indian Space Research Organization ISRO has successfully launched its Earth Observation Satellite EOS-05 on board GSLV-F17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh early this morning. After a 27-hour countdown, GSLV-F17 rocket with satellite EOS-05 lifted off at 2:55 a.m. from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center. This is a state-of-the-art Earth observation satellite and India's first imaging satellite from geosynchronous orbit, enabling advanced imaging across visible, infrared, multispectral and hyperspectral bands. The satellite will provide real-time imagery and help the nation in areas including agriculture and disaster management. ISRO said that the state-of-the-art satellite was successfully placed into sub-geosynchronous orbit about 18 minutes after it lifted off from the spaceport. ISRO Chairman V. Narayanan said the mission will further strengthen India's Earth observation capabilities and improve the delivery of Earth observation services. Government has constituted a 31-member Joint Committee of Parliament on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026. Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal will head the joint panel. Prominent names from Lok Sabha in the committee include Bhartuhari Mehtab, Tejaswi Surya, Nishikant Dubey, A. Raja and Supriya Sule. From Rajya Sabha, Harshvardhan Shringla, Sanjay Kumar Jha, Praful Patel and Menka Guruswamy have been included in the committee. Both Houses of Parliament on 12th of August gave nod for referring the bill to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill aims to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. India has sent 2 more aircraft with relief material to Nepal to support the ongoing relief and rescue efforts in the flood-affected areas. External Affairs Ministry said both C-130J aircraft carrying 21.5 tons of humanitarian assistance landed in Kathmandu. The relief material was handed over to Minister for Science, Technology and Innovation, Mahabir Pun. The Ministry of Home Affairs will make available services of Central Forensic Science Laboratories, State Forensic Science Laboratories and Laboratories of the National Forensic Sciences University for DNA profiling of first-degree biological relatives of missing persons from India following the flash flood in Nepal. Ministry of External Affairs said first-degree biological relatives residing in India may have their biological

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के

0: लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की DNA जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के DNA से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Update रहें, आगे रहें. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को follow करें.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और

0: मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है, जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F-404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिंदुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की AI जनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। AI को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने AI सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और आप ये प्रसारण सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे अतिथि कुशल बिहारी दास का साक्षात्कार और संचालन पापिया भट्टाचार्य द्वारा किया गया एक इंटरव्यू आप सभी के सामने।
1: दोस्तों श्री कृष्ण एक ऐसा नाम जिसमें बचपन की शरारत भी है, दोस्ती की मिठास भी, प्रेम की गहराई भी है और जीवन को समझने का अद्भुत दर्शन भी। कभी नटखट कान्हा, कभी सुदामा के सच्चे मित्र और कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक। लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल बाद भी श्री कृष्ण आज के युवा वर्ग से इतना गहरा कनेक्शन कैसे बनाए हुए हैं? उनकी लीलाओं और उनके जीवन से आज की यंग जनरेशन को क्या सीखने को मिलती है? जन्माष्टमी की खास मौके पर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है श्री कुशल बिहारी दास जी। पिछले कई वर्षों से स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर चल रहे कुशल बिहारी दास जी ने हमारे यंग जनरेशन को स्पिरिचुअल और एकेडमिक लाइफ के बीच बैलेंस बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने देश के कई प्रमुख इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में सेमिनार्स के जरिए युवाओं से संवाद किया और श्री कृष्ण और भगवद गीता के संदेश को सरल और प्रैक्टिकल तरीके से लोगों तक पहुंचाया है। वो राधा कृष्ण भक्ति से जुड़े भजनों के रचयिता और कवि भी हैं। कुशल बिहारी दास जी, जन्माष्टमी के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद पापे जी, हरे कृष्णा। कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं उससे पहले हम अपने गुरु एंड भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तो चलिए प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्रेयर की वजह से हमारा जो स्टूडियो है, स्टूडियो का एनवायरमेंट, स्टूडियो का परिवेश भक्तिमय बन गया है और काफी पॉजिटिविटी फील हो रहा है। तो चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं
2: जी।
1: श्री कृष्ण को हम एक ही रूप में नहीं देख सकते, वो कभी नटखट बालक है, कभी एक सच्चे दोस्त, कभी प्रेम का प्रतीक और कभी एक महान मार्गदर्शक। आप श्री कृष्ण के बहुरंगी व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं?
2: देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान शब्द की परिभाषा दी गई है, महर्षि पाराशर ने दी है, जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो षड ऐश्वर्य होते हैं ऑल ब्यूटीफुल, जो सबसे सुंदर हैं, ऑल पावरफुल, जो सबसे शक्तिशाली हैं, ऑल रिच, जो सबसे धनवान हैं, जो सबसे प्रसिद्ध हैं और जो पूरी तरह त्याग से भी भरे हुए हैं, ऑल रिनाउंस्ड। तो ये छह षड ऐश्वर्य जिसके भी अंदर होते हैं वे सभी के लिए आकर्षक बन जाते। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए, क्योंकि वे षड ऐश्वर्य से और 64 कलाओं से, आपने सुना होगा भगवान की 64 कलाएं हैं, इसलिए वे सभी के लिए आकर्षक हैं। और कृष्ण शब्द का अर्थ ही श्रील प्रभुपाद जी बताते थे ऑल अट्रैक्टिव, मतलब जो सभी के लिए आकर्षक हैं, ये भगवान की परिभाषा है। तो भगवान तो सबके लिए आकर्षक होने ही चाहिए, तो इसीलिए कृष्ण सबके लिए आकर्षक हैं, चाहे कोई भी जीवात्मा हो। आप अगर वृंदावन में देखेंगे

0: भगवान, उनका एक छोटा सा बंदर है उसको दधी लोग कहते हैं।
1: अच्छा।
0: तो वो भी उनसे प्रेम करता है, उनकी 9 लाख गायें हैं वो भी उनसे प्रेम करती हैं, और सभी जो वृंदावन के वासी हैं वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। और इस संसार में भी प्रत्येक जीवात्मा आप देखेंगे कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ी हुई है, भले ही कुछ लोग अभी ना जानते हो कि वो भगवान से प्रेम करते हैं, किंतु हम सब भगवान से प्रेम करते हैं क्योंकि हम उन्हीं का अंश हैं। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरे ही अंश हैं इस जीवलोक में सभी लोग, सभी आत्माएं, और क्योंकि हम उनके अंश हैं तो हमारे लिए उनसे आकर्षित होना स्वाभाविक है।
1: और शायद इसीलिए श्री कृष्ण हर उम्र और हर पीढ़ी के लोगों को अपने अपने तरीके से कनेक्ट करवाते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इसी बात पर उनकी बाल लीलाओं की तरफ जाते हैं सीधे। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हम सब बचपन से सुनते आए हैं, उनकी नटखट शरारतें, उनकी मुस्कान और उनका अनोखा अंदाज। इन बाल लीलाओं के पीछे सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि कोई गहरा जीवन संदेश भी छुपा है।
0: तो अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे सभी प्रकार की शरारतें करते हैं, छोटे बच्चों की लीलाओं से केवल उनके परिवार वाले या लोग प्रसन्न होते हैं, किंतु भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो भी बालक रूप में, छोटे स्वरूप में, वो सभी लीलाएं सभी के लिए बड़ी आकर्षक है और वहां से कुछ न कुछ संदेश हमें मिलता है। हमारे आचार्य बताते हैं कि वृंदावन में प्रतिदिन एक एक राक्षस आता था और भगवान उन सभी का संहार करते थे, और सबसे खास बात है कि भगवान उसके लिए किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किए, भगवान अपने हाथों से ही मारे। जैसे आपको कथा पता होगी पूतना की, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी और अपने स्तन में विष लगाकर आई थी भगवान को, भगवान 3 दिन के थे, किंतु भगवान ने पूतना की इस हत्या करने की भावना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसमें मातृत्व की भावना को स्वीकार किया। वो एक माँ बन के मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, तो भगवान ने उनका उद्धार किया, उनके प्राण ले लिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण ये कहता है कि उन्हें अपने धाम में गोलोक वृंदावन धाम, जिसे हम भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, आध्यात्मिक संसार कहते हैं, वहां पर उन्हें आया का स्थान दिया। तो यहाँ आप देखिए कि भगवान का एक बहुत ही सकारात्मक स्वरूप दिखाई देता है कि भगवान आपकी प्रत्येक भावना को स्वीकार करते हैं। भगवान को परम सत्य कहा जाता है। परम सत्य का अर्थ है कि आप किसी भी प्रकार से अगर उनसे संबंध बनाएंगे, भले ही उनसे ईर्ष्या का भी संबंध बनाएंगे, अगर उनसे द्वेष रखने का भी संबंध बनाएंगे, भगवान उसको भी आनंद के साथ स्वीकार करते हैं और उस जीवात्मा को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जैसे शिशुपाल जो भगवान को गालियां देता था, 100 गाली देने के बाद भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी, किंतु उसकी आत्मा तुरंत निकल के भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई थी, तो भगवान ने उसको भी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तो भगवान के साथ जो भी संबंध बनाता है उसको भगवान अवश्य आनंद, सच्चिदानंद भगवान उसको प्रदान करते हैं, अपने धाम में जगह प्रदान करते हैं। उनके साथ अनेक प्रकार से संबंध बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपके जीवन में बहुत सारे संबंध है, आपके माता पिता के साथ आपका वात्सल्य रस में संबंध है, आपके मित्रों के साथ साख्य रस में संबंध है, और आपके जो और लोग होंगे दास्य रस में आपके साथ संबंध रखते हैं, शांत रस में संबंध रखते हैं, पति पत्नी जो होते हैं वो आपसे माधुर्य रस में संबंध रखते हैं। तो ये जो संबंध है ये आपको इस संसार में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से भगवान से भी शाश्वत संबंध बनाए जा सकते हैं, ये श्रीमद् भागवतम हमें सिखाती है। तो भगवान की हर लीला में आपको कोई ना कोई संबंध मिलेगा जो उनके भक्त उनके साथ बनाते हैं। तो सबसे बचपन की सभी लीलाओं में आप जनरली देखेंगे उनके साख्य रस के बहुत सारे संबंध आपको दिखाई देंगे, उनके माधुर्य रस के गोपियों के साथ संबंध दिखाई देंगे, उनके वात्सल्य रस में भी उनके संबंध दिखाई देंगे। तो भगवान अपनी लीलाओं से इसी प्रकार से हमें कहते हैं कि आप मेरे साथ संबंध बनाइए, मेरे साथ मित्रता कीजिए, मेरे साथ किसी प्रकार का रिलेशनशिप बनाइए, मेरे पास आइए।
1: और कृष्णा की जब बातें हो रही है, उनके बचपन की बातें हो रही है, तो सुदामा को हम अलग नहीं रख सकते हैं
0: जी।
1: तो अगर दोस्ती की बात हो तो कृष्णा और सुदामा की मित्रता का जिक्र जरूर होता है। तो आज के सोशल मीडिया और कन्वीनियंस वाले रिलेशनशिप्स के दौर में कृष्णा सुदामा की दोस्ती हमें क्या सिखाती है?
0: देखिए कृष्ण सुदामा की जो दोस्ती है वो बहुत विशेष मित्रता है, क्योंकि इस संसार में भी हम देखते हैं मित्रताएं हम सभी करते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, किंतु एक कहानी आती है, जैसे एक मित्रता आपने देखी द्रुपद और द्रोणाचार्य की मित्रता। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को अस्वीकार कर दिया जब द्रोणाचार्य उनके पास गए, क्योंकि दोनों साथ में पढ़े थे और जब पढ़ रहे थे अपने गुरु के आश्रम में, तो द्रुपद ने उनसे यह वादा किया था कि आपको मैं जब राजा बनूंगा तो आधा साम्राज्य प्रदान कर दूंगा, लेकिन जब द्रोणाचार्य आए तो उन्होंने अपमानित करके उनको निकाल दिया। लेकिन वहीं आप अगर कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखेंगे, कृष्ण के लिए सुदामा सबसे निकट के प्रेमी आप कह सकते हैं, इतने निकट के उनके संबंध थे, और वो बहुत ही गरीब थे, लेकिन जब वे भगवान से मिलने आए तो भगवान दौड़ के उनसे मिलने के लिए गए, यद्यपि वो द्वारकाधीश हैं और सुदामा कौन है, एक गरीब ब्राह्मण।

0: जिसकी धोती भी फटी हुई है, जो एक भजन हम लोग का बहुत फेमस भजन है कि उनके दर पे सुदामा आए हैं और भगवान दौड़ के जाते हैं सुदामा से मिलने के लिए। तो भगवान ये भेद नहीं करते कि ये मेरा जो मित्र है वो गरीब है अमीर है, भगवान सभी प्रकार की मित्रताओं में सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं। तो हम ये सीख सकते हैं कि यदि आप मित्र बनाए तो असली मित्र की क्या पहचान है, वे कभी भी आपके बाह्य जो आपकी परिस्थिति है उसे देखकर दोस्ती नहीं करते, आपके मित्र हमेशा आपके भीतर देखकर आपसे दोस्ती करेंगे।
1: बिल्कुल, सच्चा रिश्ता तो वही होता है जो वक्त और पैसा ना देखे बल्कि yes. दिल से जुड़े।
0: yes.
1: जैसा कि सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती थी। बिल्कुल yes. तो अब लीलाओं की बातें हो गई है। श्री कृष्ण का जीवन सिर्फ खुशियों और लीलाओं से भरा हुआ नहीं था, उनके जीवन में भी कई कठिन परिस्थितियां आई हैं, फिर भी उनका जीवन संतुलन और मुस्कान का संदेश देता है। आज के इंसान को इससे क्या सीखना चाहिए?
0: कृष्ण के जीवन में देखें तो उनका जन्म ही जेल में हुआ था और जैसे ही उनका जन्म हुआ तुरंत उनको पिता उठा के ले गए, माँ बाप से दूर हो गए और उन्हें गोकुल में पहुंचा दिया नंद बाबा और यशोदा माँ के पास। उसके बाद आप देखेंगे कि वो कुछ वर्ष वृंदावन में रहे और इसके बाद फिर मथुरा चले गए। जो उनके प्रिय मित्र थे, सखा थे, ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, राधा थी, इन सभी के साथ बहुत प्रेम था उनको, लेकिन उन सबको छोड़ के उनको जाना पड़ा। उसके बाद मथुरा से भी उनको जाना पड़ा क्योंकि वहां जरासंध आक्रमण करता रहता था, 17 बार उसने आक्रमण किया। मथुरा वासियों की सुरक्षा के लिए भगवान सबको ओवरनाइट शिफ्ट करके द्वारका ले गए और द्वारका में भी भगवान जब सोते थे तो द्वारका की रानियां आश्चर्य में पड़ जाती थी कि भगवान सोते समय गोपियों को याद करते थे स्वप्न में। हमारा जो स्वप्न है वो हमारी चेतना का दर्पण होता है, तो जो आपकी जैसी चेतना है वैसे ही स्वप्न हमें दिखाई देते हैं। तो भगवान की चेतना में वास्तव में वृंदावन था, किंतु वो वृंदावन कभी लौट नहीं पाए। तो उनके लिए अगर हम उनके स्थान पर खुद को रखेंगे तो हम देखेंगे कि ये बहुत कष्टप्रद होगा हमारे लिए कि जिसको भी आपने प्रेम किया वो आपसे छूट गया। तो भगवान का जीवन हम देख सकते हैं बहुत टफ लगता है देखने, किंतु भगवान फिर भी कभी दुखी नहीं रहते हैं क्योंकि वह अखिल रसामृत मूर्ति हैं और रस सागर हैं, रस निधि हैं भगवान, सभी रसों के सागर हैं। तो भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो भगवान के जीवन को देख के प्रत्येक व्यक्ति यह सीख सकता है कि भगवान के जीवन में भी इतनी परेशानियां आई तो मेरा जीवन तो मैं तो क्या हूं, कौन हूं भगवान के सामने। तो मैं हमेशा उत्साहित रहूंगा, सकारात्मक रहूंगा कि भगवान ने भी तो बहुत परिस्थितियां झेली थी, क्या मैं इतनी छोटी मोटी परिस्थितियां नहीं झेल सकता। तो ये हम सीख सकते हैं भगवान के जीवन से।
1: यहीं से कुशल जी अब हम चलेंगे युद्ध की ओर। भगवत गीता में अर्जुन भी एक समय गहरे संशय और भ्रम में की स्थिति में थे, युद्ध जब कर रहे थे महाभारत के युद्ध में, तो क्या आज जीवन में आने वाली उलझने और निर्णयों को अर्जुन की उस स्थिति से जोड़कर समझा जा सकता है?
0: जी बिल्कुल, अर्जुन बड़े शक्तिशाली धनुर्धर थे, संसार में उनसे अधिक बड़ा धनुर्धर कोई नहीं था, किंतु वो महान वीर योद्धा भी जब महाभारत के कुरुक्षेत्र में पहुंचा, अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को बीच में ले चलो और कृष्ण जो उनके सारथी थे वो उनके रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले गए। वहां जाकर वह देख रहे थे कि कौन है जो मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। वहां उन्होंने देखा कि उनके पितामह भीष्म, जिनकी गोद में वो बचपन में खेले थे, वो उनके सामने खड़े थे युद्ध के लिए। द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाया, वो उनके सामने खड़े थे। कृपाचार्य, जो उनके कुलगुरु थे, वो उनके सामने खड़े थे। दुर्योधन और करीब सभी भाई, वो सब उनके सामने खड़े थे। तो अर्जुन उस समय असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए कि मैं इन लोगों को मारकर मैं क्या ही सुख प्राप्त कर लूंगा, अगर मुझे पूरा साम्राज्य भी मिल जाता है लेकिन मुझे प्रेम करने वाले लोग ही नहीं रहे तो मैं किस प्रकार से खुश रह सकता हूँ। और वो ये भी सोच रहे थे कि ये लोग, इनसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, ये मुझे मारने के लिए आए हैं, युद्ध क्षेत्र में मेरे सामने खड़े हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अर्जुन घबरा गए, उनका कंठ सूखने लगा, उनके जो गांडीव था उनके हाथ से छूटने लगा और वो दुविधा में पड़ गए कि वास्तव में क्या करना चाहिए। वो तो सोचने लगे कि मैं जाकर संन्यास ले लेता हूँ, मैं क्यों युद्ध करूँ। जैसे लोग कभी कभी कहते हैं ना, गीता मत पढ़ना, गीता पढ़ने से आप सब कुछ छोड़ दोगे। अरे अर्जुन तो छोड़ना ही चाहते थे किंतु भगवान ने गीता सुना के उनको युद्ध में लगाया। तो अर्जुन की तरह हम भी इसी एक युद्ध क्षेत्र में है। हर व्यक्ति का एक अपना युद्ध क्षेत्र है। अलग अलग परिस्थितियों में कोई ना कोई कारण से किसी न किसी तरीके से व्यक्ति लड़ रहा है। तो अर्जुन के जीवन से हम सीख सकते हैं और कृष्ण की शिक्षाओं से हम सीख सकते हैं कि चाहे जितनी भी परिस्थिति हो, हमें भागना नहीं है किसी भी परिस्थिति से, हमें डटकर सामना करना चाहिए। और जब गीता जैसा ग्रंथ हमारे पास है तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन

0: भी सुविधा उपलब्ध है। भगवान ने सबके लिए बनाया है रास्ता। आप गीता पढ़िए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है।
1: गीता पढ़ने पर हर प्रश्न का, हर उलझनों का उत्तर
0: मिल सकता है। तो आपकी जो भी दुविधा है, जो भी परेशानी है, आप गीता जी से पूछिए, गीता पढ़िए, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। तो अर्जुन की तरह हम भी युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, और अर्जुन की तरह हमें भी हार नहीं माननी चाहिए, लड़ते रहना चाहिए।
1: यहीं पे अगला सवाल मेरा आता है, श्री कृष्ण की सीख की बात हो और कर्मा की बात का जिक्र ना हो तो ये नहीं हो सकता। आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में अपना कर्म करो वाले संदेश को हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझ सकते हैं?
0: देखिए, भगवद गीता का जो श्लोक है इससे संबंधित वो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त कर्मणि। यानी कर्म पर हमारा अधिकार है किंतु फल पर हमारा अधिकार नहीं है, फल पर भगवान का अधिकार है। तो हम कर्म करते हैं और फल भगवान देते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि कर्म जो करना है वो कैसा कर्म करना है। कर्म करना गीता से जो शिक्षा मिलती है, भगवान ये कह रहे हैं, यत करोषि यदश्नासी यज्ज होषि ददासी यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। कि आप जो भी कर रहे हैं वह सब मुझको अर्पित करके कीजिए। तो क्या कोई साधारण व्यक्ति जो किसी 9 to 5 वाली जॉब में है, सुबह तैयार होता है, जॉब के लिए जाता है, हम और आप जैसे आते हैं अपने अपने कंपनीज में काम करते हैं, तो क्या हम भी कर्मयोग कर सकते हैं? क्या हम भी भक्ति योग कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। भगवान यही कह रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसको भगवान को समर्पित कीजिए। और भगवान को किस प्रकार से समर्पित करेंगे तो आप देखिए कि कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका है, हम कुछ भी अगर कमाते हैं, हम कुछ धन कमाते हैं अपनी मेहनत से, तो उसका कुछ अंश हमें दान में अवश्य देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो भी करते हैं उसको भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं। जैसे यदि आप एक अच्छे सिंगर हैं, अच्छे गायक हैं, गा सकते हैं, तो आप भगवान के भजन गाइए, भगवान का प्रेम सभी तक पहुंचाइए। आप अगर अच्छे वक्ता हैं तो आप लोगों को बताइए कि कृष्ण कितने अच्छे हैं, उनसे प्रेम कीजिए। अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, तो भगवान के चित्र बनाइए। तो आप अपने हर कार्य को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो कर्म योग जो है, एक है साधारण कुछ भी कर्म करना, लेकिन वह कर्म योग बन जाता है यदि आप उसके फलों को भगवान को अर्पित कर देते हैं, या उस कर्म को इस प्रकार मोड़ देते हैं कि वो भगवान की सेवा के लिए हो। आप एक पिता हैं तो अपने बच्चों के और अपने पत्नी के साथ हैं, तो आप उनके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाइए कि वे भी भगवान की ओर आगे बढ़ें। एक आप शिक्षक हैं तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को भी आप ऐसे मार्गदर्शन कीजिए कि वे भी भगवान की तरफ बढ़ें। तो इससे क्या होगा, आपका हर कार्य एक कर्मयोग बन जाएगा, आप भगवान के करीब जाएंगे और आप दूसरों को भी उनके करीब लेके आएंगे।
1: आजकल एक चीज देखने को मिल रही है कि युवा वर्ग में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और उनके प्रति एक अलग अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आपके हिसाब से आज की युवा वर्ग श्री कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति और अट्रैक्शन क्यों महसूस करती है?
0: जेन जी कहते हैं ना हम लोग, तो हम लोग थोड़ा सा पहले जनरेशन के, इतने भी लेकिन बुढ़े नहीं है, बट यस, जो अभी जेन जी है वो बहुत ही उत्साहित है भगवान से जुड़ने के लिए। और अभी हाल के समय में हमने देखा है, हम कभी कभी भजन जैमिंग करते हैं और भजन जैमिंग में जो युवा हैं बहुत उत्साह के साथ आते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और मैंने देखा है कि वे जानना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, वे जानना चाहते हैं कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, वे प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, शास्त्र क्या है, शास्त्र इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ आपका क्या संबंध है। तो आज का युवा मैं देखता हूं कि अपने जीवन से परे के प्रश्न पूछ रहा है, जीवन के बाद क्या, जीवन के पहले क्या था, ये प्रश्न के उत्तर आपको साधारण अपने स्कूल की किताबों में नहीं मिलेंगे। आप जब गीता खोलेंगे, भागवत खोलेंगे, तो उसमें इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर, विशेष रूप से जो कोविड का समय था उसमें, क्योंकि लोगों ने देखा कि यह संसार पूरा नश्वर है, क्षणभंगुर जीवन है, हम सभी के परिवार में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई उस समय, तो लोग तुरंत ही आकर्षित हुए, यह तुरंत जानना चाह रहे थे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या मैं टेम्पररी में जस्ट पैदा हुआ, कुछ मैंने परिवार चलाया, जॉब की, पैसा कमाया, बुढ़ा हुआ, मर गया, क्या यही है केवल जीवन का सार? तो कुछ तो होना चाहिए जिसके लिए, कुछ तो परमानेंट होना चाहिए, ये तो सब टेम्पररी लगता है, सब कभी भी खत्म हो सकता है। तो वो परमानेंट ढूंढने के लिए आज के युवा आ रहे हैं, जिससे उनको वास्तविक खुशी मिल सके, आनंद मिल सके।
1: तो ऐसे में तो आजकल की जनरेशन को करियर प्रेशर, कंपटीशन, रिलेशनशिप में

0: कंपटीशन कह लीजिए, चाहे करियर का कंपटीशन कह लीजिए, या फिर मेंटल स्ट्रेस, ये सबसे जूझ ही रही है आज की जनरेशन। तो ऐसे में श्री कृष्ण के जीवन और उनके विचारों से हमारे जो युवा वर्ग है उनको क्या सीख मिल सकती है?
1: आज बहुत प्रेशर का समय है, कंपटीशन हर जगह है। हम तो कहते हैं कि भारत जो है बिल्कुल प्रेशर कुकर हो गया है और प्रत्येक व्यक्ति, स्पेशली स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ना, तैयारी करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करवाते हैं सबको, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सबको कुछ करना है। तो भारत जो है पूरा प्रेशर कुकर की तरह हो गया है और इसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ता है बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है। और ये भी एक एक्चुअली महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से युवा वर्ग आ रहा है इस ओर, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका भी स्ट्रेस कम हो और जो टेंशन, डिप्रेशन, ये सब केसेस है ना, इन सब से छुटकारा मिले हमारी सोसाइटी को। और भगवान कृष्ण के संदेश की जहां तक बात है तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी मुश्किलों से, पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, डरो मत। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक जीवात्मा को यह समझना चाहिए कि भगवान हैं मेरी रक्षा के लिए, भगवान कह रहे हैं डरो मत। तो अगर परिस्थितियां खराब भी होती हैं जीवन में, तो भी जीवन में किसी भी गलत निर्णय लेने से पहले ये संदेश देखना चाहिए, भगवद गीता देखनी चाहिए, भागवत पुराण देखना चाहिए और वहां से समझना चाहिए वास्तव में ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है। तो किसी को भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, नकारात्मक विचारों की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए भगवान आए हैं, मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। जब आप कोई मशीन खरीदते हैं, जैसे आप घर में वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है। मैनुअल आपको ये बताता है कि वॉशिंग मशीन कैसे चलानी है,
0: कैसे मेंटेन करना है,
1: इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है। इसी प्रकार से भगवद गीता और हमारे वेद शास्त्र ये हमारे जीवन का मैनुअल है जो आपको बताते हैं कि कैसे अपने जीवन को चलाना है। तो इसी से हम सीख सकते हैं, यही भगवद गीता का सार है, यही भगवान का संदेश है।
0: कुशल जी, प्रोग्राम के अंत में एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर आपको श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं से एक ऐसा संदेश चुनना हो जो हमारे हर श्रोता अपनी जिंदगी में लेकर जा सकते हैं, तो वो संदेश क्या होगा?
1: एक ऐसा संदेश जिसको हर जीवात्मा अपना सकती है वो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। तो भगवान यही चाहते हैं कि प्रेम बढ़े समाज में, इस समाज में सौहार्द बढ़े, हम दूसरे के दर्द को भी समझें, दूसरे के कष्टों को भी समझें और दूसरे के परिस्थिति को समझकर हम उनके साथ व्यवहार करें। तभी हमारा समाज, जो हम एक कहते हैं ना राम राज्य कैसे बन सकता है? तभी बन सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के कष्ट को समझेगा, दूसरे की भावनाओं को समझेगा। और भगवान यही प्रेम का संदेश देने के लिए आए थे कि आप प्रत्येक जीवात्मा आपस में प्रेम कीजिए, आप सभी मेरे अंश हो और मुझसे भी प्रेम कीजिए, मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे भी प्रेम कीजिए। यही जन्माष्टमी का संदेश है, कृष्ण आ रहे हैं आप सबसे प्रेम करने के लिए। तो प्रत्येक वर्ष आते हैं, लेकिन हम जिस दिन उनके लिए हृदय का दरवाजा खोल देंगे उस दिन वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे हमेशा के लिए, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हमें यही संदेश लेना है, प्रेम करना है सबको।
0: बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक बातचीत रही हमारी आज की। कुशल जी, आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने और श्री कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं और उनके संदेश को इतने सरल और सुंदर तरीके से हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, हरे कृष्णा।
0: दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि जिंदगी में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अपना कर्म करते रहना चाहिए, रिश्तों को दिल से निभाना चाहिए और हर मुश्किल का सामना मुस्कान और विवेक के साथ करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ पापी और लेती हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारा एक साक्षात्कार, जिनमें अतिथि थे श्री कुशल बिहारी दास जी और साक्षात्कर्ता थी पापिया भट्टाचार्य जी। मुरली की मधुर तान हो, कान्हा के जन्म की खुशी हो और चारों ओर भक्ति के रंग बिखरे हो, तो समझ लीजिए कि त्योहारों का मौसम अपने सबसे सुंदर रूप में हमारे बीच आ पहुंचा है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा

और आज की हमारी विशेष प्रस्तुति है जन्माष्टमी के रंग और भारतीय संस्कृति में त्योहारों का महत्व। तो दोस्तों, जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व नहीं, बल्कि यह प्रेम, आनंद, भक्ति, कर्म और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का संदेश देने वाला अवसर भी है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन भारतीय संस्कृति में प्रेम से लेकर कर्तव्य तक, मित्रता से लेकर नीति तक और संगीत से लेकर अध्यात्म तक अनेक रंगों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। तो आइए, आज के इस विशेष सफर में हम महसूस करें जन्माष्टमी की खुशबू, सुने कृष्ण भक्ति से सजे मधुर गीत और बात करें उस भारतीय संस्कृति की, जहां त्योहार केवल कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का माध्यम बन जाते हैं।

दिनों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार उनका जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। उनके जन्म की कथा भारतीय लोक जीवन में सदियों से श्रद्धा और उत्साह के साथ कही सुनी जाती रही है। जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में विशेष सजावट होती है, भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रात में श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं और कई स्थानों पर बाल कृष्ण की झांकी सजाई जाती है और आधी रात को जन्म उत्सव के साथ आरती की जाती है। कहीं कृष्ण के बाल रूप की मनमोहक झांकी दिखाई देती है तो कहीं रासलीला और भजन लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि जन्माष्टमी का हर रंग अपने आप में एक कहानी कहता है।

त्योहारों की भूमि कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यहाँ अलग अलग मौसम, परंपराएं, भाषाएं और समुदाय अपने अपने ढंग से उत्सव मनाते हैं। दीपावली में प्रकाश का संदेश है तो होली में रंग और उल्लास का, ईद और ईद में भाईचारे और मिलन का, तो क्रिसमस में प्रेम और करुणा का, और बैसाखी में नई फसल की खुशी का, और पोंगल प्रकृति तथा कृषि के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। इन त्योहारों की खूबसूरती यही है कि इनके माध्यम से हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। बच्चे जब दादी नानी से त्योहारों की कहानियां सुनते हैं, घर में पारंपरिक पकवान बनते हैं, तो लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और परिवार साथ बैठकर खुशियां मनाता है। तब त्योहार सिर्फ एक दिन का आयोजन नहीं रहता, वो हमारी स्मृतियों का हिस्सा बन जाता है। और दोस्तों, जन्माष्टमी का एक बेहद लोकप्रिय रंग है नटखट कान्हा का बाल रूप। माखन चिराते कान्हा, गोपियों से उनकी नोक झोंक और यशोदा मैया के साथ उनकी बाल लीलाएं, इन कथाओं से भारतीय लोक जीवन में कृष्ण की ऐसी छवि बनाई है जिससे हर पीढ़ी आसानी से जुड़ जाती है। कई जगह जन्माष्टमी पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में ये परंपरा बहुत लोकप्रिय है और इसमें युवाओं की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर टंगी दही हांडी तक पहुंचने का प्रयास करती है। यह आयोजन उत्साह, सामूहिक प्रयास और साथ ही साथ टीम भावना का भी प्रतीक बन जाता है, क्योंकि दोस्तों त्योहार का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, वह है सामाजिक जुड़ाव। क्योंकि त्योहार हमें अपने व्यस्त जिंदगी से कुछ पल निकालकर परिवार और समाज के साथ जुड़ने का अवसर देते हैं। पड़ोसी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, बच्चे साथ खेलते हैं और घरों में खुशियों का वातावरण बनता है। और हमारे देश में अनेक त्योहार ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग समुदायों के लोग मिलजुल कर मनाते हैं। यही भारतीय संस्कृति की खूबसूरती है, विविधता की बीच एकता। क्योंकि ये त्योहार हमें याद दिलाते हैं कि खुशियां बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती है।

0: ఏ మట్కి తోడ్రే.
1: तुलसी कृष्ण का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति में अनेक रूपों में दिखाई देता है. वो बाल गोपाल है जिनकी शरारतों में मासूमियत है. वो मुरलीधर है जिनकी बांसुरी प्रेम और संगीत का प्रतीक बन जाती है. वो सखा है जो मित्रता का अर्थ समझाते हैं. वे सारथी है जो जीवन के कठिन मोड़ पर मार्गदर्शन करते हैं. और महाभारत के प्रसंग में वे अर्जुन के कर्म और कर्तव्य का महत्व समझाते हैं. इसलिए कृष्ण केवल पूजा के पात्र नहीं बल्कि भारतीय चिंतन और लोक संस्कृति का एक ज्ञान

दोस्तों, भारतीय त्योहारों की एक और खासियत है इनका प्रकृति से गहरा संबंध है। अनेक पर्व ऋतुओं, फसलों, नदियों, सूर्य, धरती और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता से जुड़े हैं। जन्माष्टमी भी वर्षा ऋतु के आसपास आने वाला पर्व है। इस मौसम में प्रकृति अपने हरियाली और सुंदर रूप में दिखाई देती है। इसलिए भारतीय त्योहारों में केवल धार्मिक भावनाएं ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान और जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव भी दिखाई देता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने में त्योहारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब बच्चा कृष्ण की झांकी सजाता है, मटकी सजाता है, भजन सुनता है या जन्माष्टमी की कथा सुनता है, तो वह केवल एक त्योहार नहीं मना रहा होता, वह अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो रहा होता है। लेकिन परंपरा का अर्थ केवल पुरानी चीजों को दोहराना नहीं है, परंपरा का अर्थ है अच्छी बातों को आगे बढ़ाना और समय के साथ उन्हें नए रूप में अपनाना। इसलिए त्योहारों को बच्चों के लिए आनंद, सीख और रचनात्मकता का अवसर बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने महसूस किया कि जन्माष्टमी के अनेक रंग हैं। भक्ति का रंग, संगीत का रंग, बचपन की शरारतों का रंग, परिवार और समाज के साथ जुड़ने का रंग और भारतीय संस्कृति की विविधता का रंग। हमारे त्योहार हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। वे हमें बताते हैं कि समय कितना भी बदल जाए, प्रेम, सद्भाव, सहयोग और खुशियाँ बांटने की भावना हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए, इस जन्माष्टमी पर हम सिर्फ घर और मंदिर ही नहीं सजाए बल्कि अपने मन को भी प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से सजाए। तो दोस्तों, कान्हा की बांसुरी की मधुर तान और जैसे मन की सारी उदासी हर गम को हर लेती है, वैसे ही त्योहारे हमारे जीवन के उम्मीद और उल्लास के रंग भरते हैं। जन्माष्टमी का रंग

इस विशेष प्रस्तुति के साथ अब हम आपसे विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। आपके घर आंगन में खुशियों की रौनक बनी रहे, रिश्तों में प्रेम बना रहे और जीवन में श्री कृष्ण के संदेशों की सकारात्मकता बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, मैं आपकी दोस्त ज्योति आप सभी से लेती हूँ इजाजत और आप सुन रहे थे रसधारा। फिर मिलेंगे किसी नए विषय, नई जानकारी और नई भावनाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।

आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। और जाते जाते मधुर प्रार्थना आप सभी के लिए छोड़े जाती है।

0: रोड़ा भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग strategic data for our country.
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्य संयुक्त समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित एक संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए हैं। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F-404IN-20 इंजनों की नई खेप भेजी है। इससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. द न्यूज़ रेड बाय नीना।

तो 97.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर है, यह है आकाशवाणी कोलकाता का चैनल सचेता, जिस पर आप सुन रहे हैं रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अंजुमन के इस सफर में आज आपके साथ है आपकी मेजबान सूफिया शीरी। आप सबको को सूफिया का पुरखलूस आदाब। स्टूडियो घड़ी में वक्त हुआ है 10:18 यानी कि शराह प्रोग्राम की पहली पेशकश आईना का। मोहतरम सामीन, आज दादा भाई नूरू जी की यौम पैदाइश है। आज हम हिंदुस्तान की तारीख की अजीम और काबिल एहतराम शख्सियत दादा भाई नूरू जी की यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। दादा भाई नूरू जी एक अजीम कौम परस्त रहनुमा, माहिर माशियात, दानिश्वर और समाजी मसला थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान के हकूक़ और अवाम की फलाह के लिए वक्फ कर दी। दादा भाई नूरू जी 4 सितंबर 1825 को बम्बई में पैदा हुए। वह हिंदुस्तान की आज़ादी की इब्तदाई तहरीक के अहम रहनुमा में शुमार होते हैं। इन्हें मोहब्बत से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वो बरतानवी पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने वाले पहले हिंदुस्तानी थे। पार्लियामेंट में उन्होंने हिंदुस्तान के मसाले अवाम के हकूक को मौसर अंदाज में पेश किया। इनकी मशहूर ड्रेन थ्योरी ने बरतानवी हुकूमत की इस माशी पॉलिसी को बेनकाब किया, जिसके जरिए हिंदुस्तान की दौलत मुसलसल बरतानिया मुंतकिल हो रही थी। इनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया हिंदुस्तान के माशी बदहाली की वजूहत को दुनिया के सामने रखा। मोहतरम सामीन, दादा भाई नूरू जी की ज़िंदगी हमें वतन से मोहब्बत, दयानतदारी, इल्म और अपने हकूक के लिए पुरअमन जद्दोजहद का दर्स देती है। इनके यौम पैदाइश पर हम इस अजीम सपूत को दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। मोहतरम सामीन, आज का हिंदुस्तान की खूबसूरत तहजीबी और मजहबी रिवायात में खास अहमियत रखता है। आज हम जन्माष्टमी का मुकदस त्यौहार मना रहे हैं। इस पुरमसरत मौके पर मैं अपने तमाम सामईन, खसूसन हिंदू भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से जन्माष्टमी की बहुत बहुत

मैं पेश बात पेश करती हूँ। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। श्री कृष्ण की ज़िंदगी हमें हक़ व सदाकत, नेकी मोहब्बत और फ़र्ज शनासी का पैगाम देती है। इनकी तालीमात में इंसान को मुश्किल हालात में भी समाज सच्चाई का साथ देने और अपने फ़राइज़ को खुलूस के साथ अंजाम देने की तरगीब मिलती है। आज के दिन मंदिरों में खसूसी पूजा भजन और कीर्तन का अहतमाम किया जा रहा है। लोग अकीदत और खुशी के साथ ये त्यौहार मना रहे हैं। बच्चों को श्री कृष्ण और राधा के रूप में सजाया जा रहा है और हर तरफ खुशी का माहौल है। हिंदुस्तान की खूबसूरती इसकी गंगा जननी तहजीब, मजहबी रवादारी और बाहमी मोहब्बत में है। आइए इस जन्माष्टमी पर हम सब मोहब्बत, अमन, भाईचारे और इंसानियत को फ़रोग देने का अहद करें। एक बार फिर तमाम सामेईन को जन्माष्टमी की दिली मुबारकबाद। श्री कृष्ण के पैगाम, मोहब्बत और लेकी से हम सब की ज़िंदगी रोशन हो, इस दुआ के साथ हम अंजुमन के अगले पड़ाव की जाने बढ़ते हैं, जिसमें मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, आपकी समातों की नज़र कर रही हूँ, अपने पराये फिल्म का ये नगमा। योगेश की शायरी को मौसीकी से सजाया है पप्पी लहरी ने।

जी आप सुन रहे थे श्याम रंग रंगारे, यशोदास और कोरस की आवाजों में अपने पराये का ये नगमा। जी बिल्कुल, आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि हम शाम के रंग में रंगने को ही बेताब हैं, लेकिन शाम का रंग कोई सांवला या काला या सादा नहीं है। शाम का रंग तो मोहब्बत का रंग है, प्यार का रंग है, भक्ति का रंग है, और ये रंग किसी एक दिन के लिए नहीं है। ये रंग में तो पूरी जीवन, पूरी जिंदगी को हमें रंगने की ज़रूरत है। इस रंग में अगर पूरा संसार रंग जाए ना, तो हर तरह का भेदभाव सब कुछ खत्म हो जाए और सारे लोग एक ही बंसी के नीचे आकर एक ही गाए कि सबसे बड़ा रंग जो है वो प्रेम का और प्यार का रंग है, और प्रेम और प्यार के बंधन से बंधने वाले दिलों में कभी कीना कदूरत या कभी नाइंसाफी, कुछ ऐसी बातें हो ही नहीं सकती। तो चलिए आज अहद करें कि हम कान्हा के इस प्यार के रंग में रंग जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा मंजरनामा की। मोहतरम सामीन, आज हम एक ऐसी अहम सरकारी तालीमी पहल के बारे में बात करेंगे जिसका मकसद तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाना और डिजिटल ज़राए के ज़रिए तालीमी मौाक़े को आसान बनाना है। इस पहल का नाम है पीएम ई विद्या। हुकूमत हिंद पीएम ई विद्या की एक जामे डिजिटल तालीमी मुहिम है जिसे कौमी तालीमी के मकासद के लिए 2020 पॉलिसी के मुताबिक तालीम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि तालिब इल्म चाहे शहर में रहता हो या किसी दूर दराज देही इलाके में, इसे मियारी तालीम मवाद तक रसाई हासिल हो सके। मोहतरम सामीन, पीएम ई विद्या की खास बात यह है कि यह सिर्फ इंटरनेट पर मुनहसर नहीं है, इसमें स्वयं दीक्षा स्वयं प्रभा के तालीमी टीवी चैनल्स, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट जैसे मुख्तलिफ ज़राए को शामिल किया गया है। इस तरह वो तलबा भी तालीम से जुड़ सकते हैं जिनके पास इंटरनेट या जदीद डिजिटल आलात की सहूलियात महदूद हैं। ताज़ा सरकारी मालूमात के मुताबिक मार्च 2026 तक दीक्षा पर 2 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड सार्फिन हो चुके थे, जबकि जनवरी 2026 तक स्वयं पर

5.80 करोड़ से ज्यादा इनरोलमेंट दर्ज किए गए। इसी तरह स्वयं प्रभा के तहत डीटीएच 48 चैनल्स 24 घंटे तालीमी मवाद फ्राहम कर रहे हैं। पीएम विद्या में खसूसी जरूरत रखने वाले बच्चों के फ्राहम किया ई कंटेंट लिए भी जाता है ताकि बसारत और समाज से मुतालिक माजूरी रखने वाले तलबा भी तालीम की अमल में शामिल हो सकें। इसके अलावा मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी के लिए भी ऑनलाइन तालीमी सहूलियात फराहम की गई हैं। मोहतरम सामीन, इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी तालीमी मसावात है, माशी हालात, जोग्राफियाई फासले या डिजिटल सहूलतों की कमी किसी बच्चे के तालीम में रुकावट ना बने, यही इस पहल की बुनियादी रूह है। ताज़ा तरीन सरकारी अपडेट के मुताबिक सितंबर 2026 में भी पीएम ई विद्या के तहत मुख्तलिफ जमातों के लिए तालीमी डीटीएच नशरियात जारी हैं। आखिर में ये कहना चाहूँगी कि पीएम ई विद्या सिर्फ एक डिजिटल तालीमी मंसूबा नहीं बल्कि तालीम सबके लिए के तस्वीर को मजबूत बनाने की एक अहम कोशिश है। आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी ज़िंदगी के हर शोबे का हिस्सा बन चुकी है, ऐसे इकदामात हमारे बच्चों को जदीद इल्म, बेहतर मौके और दूरदर्शन मुस्तकबिल से और रोशन मुस्तकबिल से जोड़ने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो माज़े सामीन, आज ने हमने मंजरनामा के तहत समाप्त फरमाया पीएम ई विद्या। और अब मौत रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म लाल किला का ये नगमा।

आप सुन रहे थे जन्माष्टमी के मौके पर हमारी खसूसी गानों की ये फहरिस्त जो हमने आपके लिए तैयार की है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसे ही नगमे पेश करें जिसमें कान्हा के प्यार, कृष्ण का प्यार, मोहब्बत और उनकी शरारतों का जिक्र हो, उनका पैगाम जो अमन के लिए है, मोहब्बत के लिए है, मुसावात के लिए है, धर्म के लिए है, कर्म के लिए है, वो आप तक पहुँचे। कान्हा के कई रूप हैं, कहीं वो धर्म की बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, तो कहीं वो राधा की मोहब्बत में, गोपियों की मोहब्बत में लीन नजर आते हैं, कहीं वो शरारती बच्ची की तरह नटखट शरारतें करते हैं, मटका तोड़ते हैं और माखन चुराते हैं, कहीं गोपियों को सताते हैं, तो कहीं गीता का पूरा पद है उन्हीं के साथ मंसूब होता है। आपको जब भी किसी धर्म संकट में पड़ते हैं तो आपको कृष्ण के वो बोल याद आते हैं जो उन्होंने हमें बताए हैं कि किस तरह जब हम जज्बात और दिमाग के बीच फंस जाएं तो फैसला कैसे करें। तो अगर बात धर्म की हो, कर्म की हो, मोहब्बत की हो, प्रेम की हो, शांति की हो, अमन की हो, मुसावात की हो, तो नाम आता है श्री कृष्ण का। चलिए, बातें तो होती रहेंगी और ये ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए अगर हम घंटों बोलते भी रहे ना तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे, वक्त कम पड़ जाएगा, स्याही कम पड़ जाएगी, लेकिन इनकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है, क्योंकि घड़ी की सुइयां कह रही हैं ना कि अंजुमन प्रोग्राम के अब अगले पड़ाव की जानब हम बढ़ें, क्योंकि घड़ी पे वक्त हो चुका है 10:37 और हमारी अगली पेशकश है साइंस की बातें, जिसमें आज हम बात करेंगे टेलीविजन पर। साइंस की बातें में आज सूफिया शिरी लेकर आई है टेलीविजन में तेज रफ्तार तब्दीलियां। आप सुन रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम साइंस की बातें और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ईजाद की जिसने गुज़िश्ता कई दहाइयों से हमारी ज़िंदगी, हमारी तफरी, हमारे इल्म और हमारी दुनिया को देखने के अंदाज को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, आज का मौजू है टेलीविज़न और इसमें होने वाली तेज़ रफ्तार साइंसी तब्दीलियाँ। मोहतरम सामीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए आज से 50 या 60 साल पहले का टेलीविज़न कैसा होता था। एक भारी भरकम डिब्बा जिसे घर में रखने के लिए खास जगह बनानी पड़ती थी, उसकी स्क्रीन महदूद होती थी, तस्वीर का मियार भी आज के मुकाबले में बहुत कम था और चैनल भी गिने चुने हुआ करते थे। लोग अपने पसंदीदा प्रोग्राम के मुकर्रर वक्त का इंतज़ार करते थे, अगर प्रोग्राम छूट गया तो इसे दोबारा देखने का कोई आसान जरिया नहीं था। लेकिन साइंस कभी एक जगह नहीं रुकती, नई तहकीक, नई टेक्नोलॉजी और इंसानी ज़रूरतों ने टेलीविज़न को भी मुसलसल तब्दील किया। ब्लैक एंड वाइट टीवी से रंगीन टीवी तक का सफ़र अपने आप में एक बड़ी साइंसी तब्दीली था। फिर CRT यानी पुराने भारी टेलीविज़न की जगह LCD और LED स्क्रीनों ने ले ली। टीवी की मोटाई कम होती गई, स्क्रीन बड़ी होती गई और तस्वीर का मियार बेहतर से बेहतर होता चला गया। मोहतरम सामेईन, आज हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसमें टेलीविज़न सिर्फ टेलीविज़न नहीं रहा, अब एक स्मार्ट डिवाइस बन चुका है। जदीद स्मार्ट टीवी को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, हम इसके ज़रिए फिल्में, ड्रामे, खबरें, खेल, तालीमी प्रोग्राम और दुनिया भर का मुख्तलिफ मवाद अपनी सहूलत के मुताबिक देख सकते हैं। पहले टेलीविज़न पर जो कुछ नशर किया जाता था हमें वही देखना पड़ता था। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी ने देखने के पूरे तरीक़े को बदल दिया है। अब नाज़रीन अपनी पसंद के मुताबिक पसंद के प्रोग्राम को अपनी सहूलत के वक्त देख सकते हैं, यानी टेलीविज़न हमारी ज़रूरत के मुताबिक चलने लगा है। साइंस ने तस्वीर के मियार में भी हैरतअंगेज़ तरक्की की है। एक वक्त में आम तस्वीर ही बड़ी कामयाबी समझी जाती थी, लेकिन आज HD, 4K, फुल HD और 8K जैसे टेक्नोलॉजीज़

मौजूद हैं। स्क्रीन पर तस्वीर इतनी वाज़ह दिखाई देती है कि नाज़रीन को ऐसा महसूस होता है जैसे वो मंजर के बहुत करीब मौजूद हैं। इस तरह HDR यानी हाई डायनामिक रेंज टेक्नोलॉजी ने तस्वीर के रोशन और तारीख हिस्सों को ज़्यादा वाज़ह बनाने में मदद दी है। रंगों की गहराई और तस्वीर की तफसील में बेहतरी आई है। इसके नतीजे में फिल्म, खेल और कुदरती मनाजर देखने का तजर्बा पहले से कहीं ज़्यादा हकीकत के करीब हो गया है। मोहतरम सामीन, टेलीविज़न की तरक्की सिर्फ तस्वीर तक महदूद नहीं रही, आवाज़ के शोबे में भी साइंस ने बड़ी पेशरफ्त की है। जदीद टीवी में बेहतर स्पीकर्स और मुख्तलिफ किस्म की ऑडियो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। बाज़ निज़ाम नाज़रीन को ऐसा सूती तजर्बा फ्राहम करते हैं जिससे इन्हें महसूस होता है कि आवाज़ मुख्तलिफ समतों से आ रही हैं। एक और अहम तब्दीली मस्नूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ल में सामने आई है। आज के जदीद स्मार्ट टीवी में AI मुख्तलिफ कामों में मदद कर सकती है। मिसाल के तौर पर टीवी सारिफ की पसंद और देखने की आदत के बुनियाद पर मवाद तजवीज़ कर सकता है। आवाज़ के ज़रिए टीवी को हुक्म देना भी मुमकिन हो गया है। आप रिमोट हाथ में लिए बगैर अपनी आवाज़ से चैनल तब्दील करने, प्रोग्राम तलाश करने या बाज़ दीगर कामों की हिदायत दे सकते हैं। मौज़े सामीन, ज़रा गौर कीजिए कि छोटी सी स्क्रीन ने हमारे घर को दुनिया से किस तरह जोड़ दिया है। आज हम अपने घर बैठे दुनिया के किसी भी हिस्से की खबर देख सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क में होने वाले खेलों के मुकाबले बराह रास्त वो भी देख सकते हैं, तालीमी लेक्चर सुन सकते हैं और मुख्तलिफ ज़बानों और सकाफ़तों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ टेलीविज़न का एक नहायत अहम पहलू तालीम भी है। तालीमी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म बच्चों, नौजवानों और बड़ों के लिए इल्म के बेशुमार दरवाजे खोल रहे हैं। साइंस, तारीख, जुग्राफिया, ज़बान, अदब और टेक्नोलॉजी सब समेत तकरीबन हर शोबे की तालीम प्रोग्राम आज टेलीविज़न और इससे जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब हैं। ख़ास तौर पर बच्चों के मामले में वालदैन की जिम्मेदारी बढ़ भी जाती है क्योंकि ज़्यादा उन्हें हमें टीवी देखने से बचाना है। बच्चों को टेलीविज़न, मोबाइल स्क्रीन का आदि बनाने से हमें बचाना भी है, ये भी ज़रूरी है। लेकिन ये भी है कि आज के वक्त में आप इन सब चीज़ों से दूर भी नहीं रह सकते। आने वाले दिनों में टेलीविज़न मज़ीद ज़हन ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा ज़ाती नौयत का हो सकता है। मुमकिन है मुस्तकबिल में स्क्रीन टेक्नोलॉजी मज़ीद तरक्की करे, आवाज़ और तस्वीर का तजर्बा मज़ीद हकीकत के करीब हो और टेलीविज़न घर के दूसरे ज़हन आलात के साथ मिलकर काम करें। मोहतरम सामीन, आज के प्रोग्राम में साइंस की बातें में बस इतना ही। उम्मीद है टेलीविज़न के बदलते हुए साइंसी सफ़र ने आपकी दिलचस्पी ज़रूर बढ़ाई होगी। अगली नशस्त में हम साइंस के किसी और हैरत अंगेज़ ईजाद और इसमें होने वाली नई तब्दीलियों के सफ़र पर ख़ास तौर पर हम बात करेंगे।

उम्मीद है आपको ये मुख्तसर सी गुफ्तगु साइंस की बातों में टेलीविज़न के में तेज़ रफ्तारी से होती हुई तब्दीलियों पर अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय से हमें नवाजेंगे, कोशिश करेंगे हम भी आपके लिए मुख्तलिफ तरह से आपकी तफरी का सामान मुहैया करें। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में ये ज़रूर कहूँगी कि आज है जन्माष्टमी का त्यौहार और हम याद कर रहे हैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के पैगाम को, उन मोहब्बत भरी बातों को जिससे दुनिया के सारे दिल जुड़ जाते हैं। और श्री कृष्ण की तालीमात को साथ साथ याद करते हुए ये भी याद कीजिए कि श्री कृष्ण जी कितने नटखट थे और उन्होंने कितना सताया है मैया यशोदा को। और मैया यशोदा के साथ साथ उन्होंने गोपियों को, राधा को कितना सताया है। और जब तंग आ जाएं गोपियां और राधियां तो फिर क्या करें, शिकायत ही करेंगी ना मैया यशोदा से।

आपको सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निका और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म हम साथ साथ हैं का नगमा। आर किरण की शायरी को मौसीकी से सजाया था राम लक्ष्मण ने और आवाजों का जागू तो जगाया था कविता कृष्णमूर्ति की अगला अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल ने। बिल्कुल, नटखट कान्हा जब सताए तो राधा रानी शिकायत लेकर मैया यशोदा के पास जाए, और जब नटखट कन्हैया गोपियों से नैन लड़ाए तो फिर राधा रानी कैसे ना चलिए और कैसे ना फिर ये कहे।

आप सुन रहे थे फिल्म लगान का ये नगमा। आशा भोसले, उदित नारायण और वैशाली और कुरस की आवाज़ों में जावर अख्तर की शायरी को ए आर रहमान की मौसीकी के साथ। जी हाँ, जब कृष्ण जी का नाम आता है, कृष्ण का नाम आते ही राधा का नाम आना ज़रूरी है, लेकिन एक और भी है जिसका नाम हमेशा, जिसकी भक्ति के गीतों के बिना कृष्ण जी की भक्ति मुमकिन नहीं है। जी हाँ, वो है मीरा। राधा और मीरा और कृष्ण, ये तीनों का ये जो ट्रायंगल है, ये लव स्टोरी है। इसे एक तरफ तो प्रेम है, दूसरी तरफ तरस है, एक तरफ दीवानगी है, एक तरफ तो दूसरी तरफ संपूर्ण समर्पण है। तो आप चलिए हम सुनते हैं आशा भोसले, उदित नारायण की आवाज़ों में, ये माफ़ कीजिएगा, हम

सुनते हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली का यह नगमा। लता मंगेशकर की आवाज़ में, शायरी रविंद्र जैन की, जैसे मौसीकी से सजा है खुद रविंद्र जैन ने।

Chris Rockford and Jennifer Play, Crush, Club Mix.

आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलो हर्ट्ज पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, आज हम सुरभि कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा है में बातें करेंगे दादा भाई नौरोजी की जयंती के विषय में। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी उन महान व्यक्तियों के व्यक्तित्वों में से एक है जिन्होंने शिक्षा, समाज सुधार, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक जीवन के माध्यम से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज 4 सितंबर है और ये दिन महान भारतीय नेता और विचारक दादा भाई नौरोजी की जयंती के रूप में विशेष महत्व रखता है। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर सन

1825 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। वे एक प्रतिभाशाली शिक्षक, समाज सुधारक, पत्रकार, अर्थशास्त्री और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित और प्राकृतिक दर्शन के अध्यापक के रूप में कार्य किया और शिक्षा को समाज की प्रगति का महत्वपूर्ण माध्यम माना। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयास भी उल्लेखनीय रहे। दादा भाई नौरोजी की ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उन्होंने गुजराती पत्र रफ्त गोफ्तार शुरू किया, जिसके माध्यम से सामाजिक जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारियों से जुड़े विचार लोगों तक पहुंचाए गए। आगे चलकर उन्होंने भारत के आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों को व्यापक स्तर पर उठाया। भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन में दादा भाई नौरोजी का नाम विशेष रूप से याद किया जाता है। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति और गरीबी का अध्ययन आंकड़ों के आधार पर किया तथा औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों के प्रभाव पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसी विषय से जुड़ी उनकी महत्वपूर्ण कृति है। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती प्रमुख नेताओं में रहे और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता भी की। वर्ष 1892 में वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय बने। इसी उपलब्धि ने भारतीयों के सार्वजनिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। दादा भाई नौरोजी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि शिक्षा, ज्ञान, तथ्यों और शांतिपूर्ण सार्वजनिक प्रयासों के माध्यम से भी समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरण के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आइए उनकी जयंती पर हम उनके विचारों और योगदान को याद करें और शिक्षा, जागरूकता और देश हित के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का संकल्प लें।

चर्चा है, मैं अब आगे बढ़ते हैं जन्माष्टमी की ओर। जी हाँ, तो दोस्तों हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी हिंदू धर्म के एक प्रमुख पर्व है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था, इसी कारण इस दिन को जन्माष्टमी कहा जाता है। और दोस्तों, श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, बुद्धिमता और कर्तव्य का संदेश देता है। उनके बाल रूप की लीलाएं हो या राधा कृष्ण का प्रेम हो या महाभारत में अर्जुन का दिया गया भगवद गीता का संदेश, श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। और जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर के मंदिरों को सजाया जाता है, भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और आधी रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। और कई स्थानों पर दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है, जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी लोकप्रिय परंपरा है। दोस्तों, जन्माष्टमी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में प्रेम, सत्य, धैर्य और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। यही इस पावन पर्व की सुंदर

दोस्तों, अब कार्यक्रम सुरभि में आगे बढ़ते हुए बढ़ते हैं पहल की ओर। तो दोस्तों, आज पहल में जुड़ी है बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से, क्योंकि हमारा विषय है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसे संक्षेप में हम पीएम पोषण कहा जाता है। पीएम पोषण योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित योजना है और इसका उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को विद्यालय के कार्य दिवसों में गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है।

योजना के अंतर्गत बाल वाटिका तथा कक्षा 1 से 8 तक के पात्र बच्चों को शामिल किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना, उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रोत्साहित करना और कक्षा में पढ़ाई के दौरान बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना। यानी यह पहल केवल भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के स्वस्थ विकास और शिक्षा से भी जुड़ी हुई है। पीएम पोषण योजना में बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भोजन के लिए निर्धारित पोषण और खाद्य मानक है। प्राथमिक स्तर पर बच्चा प्रतिदिन भोजन में 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन के पोषक मानक निर्धारित है। योजना में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों और सब्जियों को भोजन में शामिल करने को भी प्रोत्साहित किया जाता है और इसके साथ ही स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन, सामुदायिक भागीदारी और अतिथि भोजन जैसे पहले भी बच्चों को पोषण और प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करती है। पीएम पोषण का संदेश बहुत सरल है, स्वस्थ बच्चे, नियमित विद्यालय और बेहतर शिक्षा। जब बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता है तो उनके स्वस्थ विकास के साथ साथ उनकी पढ़ाई में रुचि और एकाग्रता को भी बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, आज के पहल के माध्यम से यही संदेश बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए पोषण और शिक्षा दोनों के साथ बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इसी सकारात्मक संदेश के साथ आज के कार्यक्रम पहल यहीं तक। और आज के कार्यक्रम पहल में हमने सुना पीएम पोषण योजना के विषय में। तो दोस्तों, स्टूडियो में समय हो चला है 12:13 और 15 सेकेंड, यानी कि घड़ी की सुई बता रही है कि सुरभि कार्यक्रम अपने अब समापन की ओर बढ़ चला है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी कोलकाता का संचयता चैनल मीडियम वेव 297.6 मीटर अर्थात 1008 किलोहर्ट्ज़ पर, और ये प्रसारण आप सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी। तो दोस्तों, जाते जाते लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज में एक मधुर तराना आप सभी के लिए छोड़े जाती हूँ।

Funky Big Band by Janet Jackson. Right next.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट GSLV।

0: यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: जियो ऑर्बिट प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
2: नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में डीएनए जांच भी शुरू की गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम।
2: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। वहीं गुजरात में भी धूमधाम से ये पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ जगहों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान व्यक्त किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 551 अंक के उछाल के साथ 76,704 जबकि निफ्टी 69 अंक बढ़कर 23,943 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Guna, Chhatarpur, Sagar, Damoh and Narmadapuram. Heavy rain is likely to continue in many parts of the state over the next 2 days. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
1: 10 major rivers including the Ganga, Punpun, Gandak and Kosi are in spate in Bihar. Flood conditions prevail in 16 districts of the state.
2: In Bihar, 8 rivers including the Ganga are flowing above the danger mark. The water level of the Ganga in Patna continues to rise. With increasing backwater pressure in the Punpun and Dardha rivers, surveillance of the protective embankments has been intensified. Instructions have been issued to keep all 108 gates of the Patna flood protection wall closed. Floodwaters are rapidly spreading into low-lying areas of the affected districts, disrupting road connectivity in rural areas. Breaches in embankments at Asthava in Nalanda district and Dhanrua in Patna district have submerged hundreds of acres of crops. In view of the rising water levels of the rivers, the Disaster Management Department has directed Patna and 7 other districts to remain on high alert. In view of the seriousness of the situation, Chief Minister Samrat Chaudhary will conduct an aerial survey of the flood-affected areas today. Savita Parikh, Akashvani News, Patna.
1: At the China Masters Badminton, the Indian pair of Sattvik Sai Raj, Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Danish pair of Kim Astrup and Anders Skarup Rasmussen this evening for a place in the semi-finals in Shenzhen, China. The match is estimated to begin at 4:10 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Country gets first sub-geosynchronized Earth observation satellite. Prime Minister Narendra Modi says successful launch reflects growing capabilities of India's space sector. BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Centre to make available DNA profiling services for first-degree relatives of missing persons in Nepal. Death toll due to devastating floods rises to 1,282. Festival of Janmashtami being celebrated across the country. IMD predicts heavy to very heavy rainfall over Madhya Pradesh till tomorrow. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
4: I am very happy to announce that GSLV.
5: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV F-17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।

0: orbit, providing important strategic data for our country.
1: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत इटली रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए करीबी सहयोग जारी रखने को लेकर उत्साहित हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 1,282 लोगों की मृत्यु हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट।
4: नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5,053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 572 क्षमा करें कृपया इसको दोबारा सुन लें अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू

0: एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
3: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के

0: चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इसराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী কলকাতা অনুষ্ঠান শুনছেন 297.6 মিটারে, অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এখন শুনবেন খেয়াল, শিল্পী দিলীপ কর্মকার। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করছেন মীনাকী চক্রবর্তী, হারমোনিয়ামে সোমনাথ বর্ধন, রাগ গৌর সরঙ্গ।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হল সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান শুনছেন 297.6 মিটারে, অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59:55।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই শক্তি সিং। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्या सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की सफलता पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए DNA जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुँच चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर चेन्नई में रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वाल्व संबंधी और संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वाल्व्स 2026 में भाग लेंगे। वे चेन्नई के गिंडी में इंडिया वाल्व पंजिका का शुभारंभ भी करेंगे। पूर्वोत्तर में सीमा पार से होने वाली कृत्रिम मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB की अगरतला क्षेत्रीय इकाई ने लगभग 17.84 करोड़ रुपए मूल्य की करीब 22 किलो मेटमेफेटाइन माइन की गोलियां जब्त की हैं। मिजोरम और त्रिपुरा में 2 अलग अलग अभियानों में म्यांमा के एक नागरिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंडर्स का रूप रसमुवना से खेलेगी। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग की ली चेक्यू से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर भारत अपराजित रहा। लीग चरण में भारत ने एंटीगुआ, बरबुड़ा, इसराइल

सूर्यो की घड़ी में समय हो चला है 5:20 और 25 सेकंड। आप सुन रही हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संक्षिप्त चैनल, और आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका। सबसे पहले आप सभी की को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज उर्वशी कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है और उर्वशी के अंतर्गत हर दिन हम अलग अलग सेगमेंट्स लेके आते हैं, और आज के सेगमेंट की अगर बात की जाए तो उर्वशी के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे सुरुचि की, जिसके अंतर्गत आपको बताऊंगी दो खास रेसिपीज। कौन सी है वो रेसिपीज जरूर बताऊंगी, लेकिन करिए थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल आप सभी के लिए पेश है ये गीत।

संजोग से आप सुन रहे थे ये गीत जो कि था लता मंगेशकर की आवाज़ में। दोस्तों, जब श्री कृष्ण की बात आती है तो मन में उनके सिखाए जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, या यूँ कह सकते हैं ऐसे संदेश जो उन्होंने समाज के सामने रखे हैं, वे आने लगते हैं। और उन संदेशों की अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रेम, श्रद्धा, साथ ही सही निर्णय ले पाने की क्षमता में एकदम मतलब खुद को ढालने को कहा है। और दोस्तों, जब बात होती है सुरुचि के अंतर्गत आज के विषय की, तो आपको बता दें चूंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो इसलिए उर्वशी के सुरुचि के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे दो विशेष विषयों पर, दो विशेष व्यंजनों पर, और ये है धनिया की पंजीरी और सिंघाड़े के आटे का हलवा। ये दोनों ही विशेष है आज के दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यानी जन्माष्टमी के दिन इन चीज़ों को बनाकर हमारे जो श्रद्धेय श्री कृष्ण हैं उन्हें अर्पित किया जाता है। धनिया पंजीरी और सिंघाड़े के आटे के हलवे में अगर बात की जाए तो ये त्योहारों के लिए बहुत ही स्पेशल माना जाता है। ये हमारी संस्कृति की खुशबू लिए हुए होते हैं और साथ ही कभी किसी पकवान की मिठास में और मंदिर की घंटियों में इनकी जो गंध है वो कहीं ना कहीं फैल जाती है। तो दोस्तों, आज हमारी विशेष जो प्रस्तुति है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे दो ऐसे पारंपरिक व्यंजनों की, भारतीय व्यंजनों की, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से भरी हुई है, धनिया पंजीरी और साथ ही सिंघाड़े के आटे का हलवा। जब व्रत, त्यौहार या विशेष धार्मिक अवसर की बात होती है तो हमारे मन में इन पारंपरिक व्यंजनों का नाम आता ही है। बात अगर की जाए धनिया पंजीरी की तो सबसे पहले आपको बता दें कि धनिया पंजीरी का नाम सुनते ही बहुत से लोग जन्माष्टमी की को याद करने लगते हैं, क्योंकि ये विशेष रूप से श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर बनाया जाता है। दोस्तों, विशेष रूप से उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जन्माष्टमी के अवसर पर धनिया पंजीरी बनाने की परंपरा मिलती है और मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के बाद भक्तों में प्रसाद के रूप में इसे दिया जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि ये पंजीरी आखिर होती कैसी है और क्या है। पंजीरी एक बहुत ही पारंपरिक मतलब एक बहुत ही पुराना और पारंपरिक मिश्रण

उपकरण है जिसमें भुने हुए अनाज, आटे और मेवे के बीज के साथ साथ मसाले, घी जैसी सामग्रियां भी पाई जाती हैं। क्षेत्र के हिसाब से अगर बात की जाए तो हर जगह का स्वाद, खान पान आदि बदलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धनिया पंजीरी जो है ये मुख्य रूप से धनिया पाउडर या भुने हुए धनिये के साथ बनाई जाती है। धनिया हमारे भोजन में एक लोकप्रिय मसाले के रूप में जाना जाता है और इसकी खुशबू से भोजन का अलग ही स्वाद आने लगता है। और दोस्तों आपको बता दें कि धनिया पंजीरी धनिये के साथ जब बनाते हैं हम तो उसमें क्या क्या चाहिए होता है, तो घी, पिसी हुई मिश्री या चीनी, मखाने, बादाम, काजू, किशमिश, नारियल और अपनी पसंद के दूसरे मेवे भी आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ घरों में इसमें सौंफ, इलायची और अन्य सुगंधित सामग्रियाँ भी डाली जाती हैं। साथ ही ये ध्यान में रखना जरूरी है कि पंजीरी की रेसिपी कोई एक निश्चित रूप से नहीं बनाया जाता है, हर परिवार अपने पारंपरिक विधि से इसे जरूर बनाता है। धनिया पंजीरी बनाने की अगर विधि की बात की जाए तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में आपको लेना है थोड़ा सा घी और उसमें फिर धनिया पाउडर या हल्का भुना हुआ धनिया डालकर इसे धीमी आंच पर भूनना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि धनिये को जलने नहीं देना है, धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे तब तक भूनना है जब तक इसकी खुशबू अच्छी तरह से न आने लगे। अब दूसरे और मेवों की अगर बात की जाए तो मखानों को भी इसमें डालकर हल्का सा भून लेना है और मेवे भी इसमें हल्का सा भून लेना है। ठंडा होने के बाद मखानों और मेवों को अपनी पसंद के अनुसार आप छोटा छोटा काट सकते हैं या फिर हल्का दरदरा पीस भी सकते हैं और फिर भुना हुआ धनिया, मेवे, मखाने और नारियल, साथ ही पिसी हुई मिश्री या चीनी, आपको जो भी पसंद हो वो लेकर आप इसे मिक्स कर दें। फिर अंत में इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं। धनिया पंजीरी तैयार हो गई और जन्माष्टमी की प्रिपरेशन भी। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:31 और 30 सेकंड। आप सभी के लिए पेश है आज का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मधुश्री की आवाज़ में ये गीत बाहुबली 2 से, और बातें हो रही हैं जन्माष्टमी में आज के विशेष व्यंजनों के, क्योंकि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल, जिस पर कार्यक्रम उर्वशी के अंतर्गत आज सुरुचि में बातें हो रही हैं इस विशेष विषय पर। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो बता दें आपको, धनिया पंजीरी और सिंघाड़े के आटे का हलवा, ये दो विशेष जो रेसिपीज़ हैं इनके विषय में आज हो रही हैं बातें। और धनिया पंजीरी की बातें तो हो गई, लेकिन अब बात है आप सभी के लिए इस सिंघाड़े के आटे के हलवे के विषय में। वैसे दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नाम सुनकर, यानी सिंघाड़े के आटे के हलवे के बारे में सुनकर ही उनकी जुबान पर एक तरह से कहीं ना कहीं उसका स्वाद आ गया होगा। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आपने कभी ट्राई किया है सिंघाड़े के आटे का हलवा, तो आप उसका स्वाद कभी नहीं भूल सकते। लेकिन अगर आपको ये स्वाद नहीं पता है, तो आज रेसिपी सीख लीजिए और ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिंघाड़े के आटे के हलवे के विषय में। दोस्तों, ये जो हमारी दूसरी रेसिपी है, जो कि एक पारंपरिक स्वादिष्ट रेसिपी है, इसके बारे में, इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए और आप कैसे इसे बना सकते हैं, ये सारी बातें अब आपको बताऊंगी। सिंघाड़ा एक जलीय फल होता है, जिसे हम पानी फल के रूप में भी जानते हैं, पानी फल के नाम से भी जानते हैं, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं वाटर चेस्टनट। और दोस्तों, ये जो है सिंघाड़ा, इसे सुखाकर बनाया जाता है सिंघाड़े के आटे का हलवा। भारत में ये आटा विशेष रूप से व्रत और उपवास के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी और अन्य व्रतों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पर जन्माष्टमी के समय में इस आटे से हलवा बनाया जाता है। सामग्री के विषय में आपको बता दें, सिंघाड़े के आटे को आप ले लेंगे, आप इसके साथ लेंगे घी, पानी या फिर दूध, चीनी और मेवे, अपने हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, और स्वाद या पसंद के अनुसार आप इलायची भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन बिना इलायची के भी इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी गर्म करना है, उसमें सिंघाड़े के आटे को डालना है और फिर धीमी से मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। और इस चरण में बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आटा जो है वो कहीं लग ना जाए या फिर कच्चा ना रह जाए, दोनों आपको ध्यान में रखना है। हल्का ब्राउन होने तक आपको इसे भूनना है, और हलवे का स्वाद काफ़ी हद तक इस बात पर

निर्भर करता है कि आटा जो है वो अच्छी तरह से भुना है या नहीं। जब आटे से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो आप उसका रंग भी देख लें कि उसका रंग हल्का सा बदल गया है, तब आप इसमें धीरे धीरे पानी या जो दूध है वो ज़रूर डालें। और डालते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें कि मिश्रण जो है वो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है, बहुत जल्दी डेंस हो जाता है, तो उस समय आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अच्छे से मिक्स करें, नहीं तो गांठें पड़ने लगती हैं। और लगातार चलाते हुए ही आपको इसमें पानी या दूध डालना है, नहीं तो गांठें ज़रूर पड़ेंगी। इसके बाद आपको इसमें डालना है चीनी और फिर अच्छी तरह से इसे मिला लेना है और कुछ देर तक पकने देना है ताकि हलवा जो है वो गाढ़ा होने लगे। और फिर इसमें इलायची और कटे हुए मेवे आप डाल सकते हैं। और गर्मा गर्म सिंघाड़े के आटे का हलवा तैयार है। और व्रत के समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसका सेवन करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पोषक भी होता है, इसमें पोषण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, फिलहाल आप सभी के लिए पेश है आज के कार्यक्रम का अगला तराना। और इस तराने को सुनते सुनते आपको ये भी बता दें, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:40। आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर पर 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल।

दोस्तों दो रेसिपीज़ की बात तो हो गई, लेकिन अब इसके पोषण की अगर बात की जाए तो धनिया पंजीरी जो है ये और सिंघाड़े के आटे का हलवा, ये दोनों ही स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पोषण में भी भरपूर हैं। इन व्यंजनों का इस्तेमाल जो इन व्यंजनों में जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है वे इन्हें और भी ज़्यादा पोषक बना देते हैं। मेवे स्वास्थ्य में वसा, प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न प्रकार की जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनको प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ सिंघाड़े से बना हुआ जो आटा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और धनिया भी भोजन और में और स्वाद में सुगंध में अच्छी तो होती है, साथ ही पोषक तत्वों से भरी होती है। घी और चीनी की मात्रा जो है उसे सही रूप में अगर आप डालें तो ये पूरा जो ये दोनों जो व्यंजन है ये बिल्कुल संतुलित आहार के रूप में आपके स्वास्थ्य को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं।

दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 5:50 आप सभी के लिए आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत और देविका अभी के लिए आपसे लेती है इजाजत।

0: from now.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहां के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरलम में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमुला वल्ला सद्य इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफल प्रक्षेपण की सराहना की। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों तथा उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सर्वोच्च न्यायालय इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भारतीय देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल चेन्नई जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वॉल्व संबंधी संरचनात्मक हृदय रोगों के उपचार को बढ़ावा देने के लिए समर्पित राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन इंडिया वॉल्व 2026 को संबोधित करेंगे। श्री राधाकृष्णन चेन्नई के गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1282 हो गई है। 5053 लोग लापता हैं। शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल जोड़ी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कारूप रमसुसेन से होगा। ताजा समाचार मिलने तक दोनों जोड़ियों ने 1-1 गेम जीत लिया है। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज अनाहत सिंह का मुकाबला मलेशिया के शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम की नेले गिलिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हुई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों, अभी आप सुनेंगे जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर एक विशेष वार्ता।
1: ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भगवान शब्द की परिभाषा दी गई है, महर्षि पाराशर ने दी है, जो षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। तो षड ऐश्वर्य होते हैं ऑल ब्यूटीफुल जो सबसे सुंदर हैं, ऑल पावरफुल जो सबसे शक्तिशाली हैं, ऑल रिच जो सबसे धनवान हैं, जो सबसे प्रसिद्ध हैं और जो पूरी तरह त्याग से भी भरे हुए हैं, ऑल रिनाउंस। तो ये छह षड ऐश्वर्य जिसके भी अंदर होते हैं वे सभी के लिए आकर्षक बन जाते। तो भगवान श्री कृष्ण इसीलिए, क्योंकि वे षड ऐश्वर्य से और 64 कलाओं से, आप सुना होगा भगवान की 64 कलाएं हैं, इसलिए वे सभी के लिए आकर्षक हैं। और कृष्ण शब्द का अर्थ ही श्रील प्रभुपाद जी बताते थे ऑल अट्रैक्टिव, मतलब जो सभी के लिए आकर्षक हैं, ये भगवान की परिभाषा है। तो भगवान तो सबके लिए आकर्षक होने ही चाहिए, तो इसीलिए कृष्ण सबके लिए आकर्षक हैं, चाहे कोई भी जीवात्मा हो। आप अगर वृंदावन में देखेंगे, भगवान उनका एक छोटा सा बंदर है उसको दधी लोक कहते हैं, तो वो भी उनसे प्रेम करता है। उनकी 900,000 गायें हैं, वो भी उनसे प्रेम करती हैं, और सभी जो वृंदावन के वासी हैं वो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। और इस संसार में भी प्रत्येक जीवात्मा आप देखेंगे कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ी हुई है। भले ही कुछ लोग अभी ना जानते हो कि वो भगवान से प्रेम करते हैं, किंतु हम सब भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उन्हीं का अंश हैं। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, मेरे ही अंश हैं इस जीवलोक में सभी लोग, सभी आत्माएं। और क्योंकि हम उनके अंश हैं तो हमारे लिए उनसे आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो अगर आप देखेंगे छोटे बच्चे सभी प्रकार की शरारतें करते हैं, छोटे बच्चों की लीलाओं से केवल उनके परिवार वाले या लोग प्रसन्न होते हैं, किंतु भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो भी बालक रूप में छोटे स्वरूप में, वो सभी लीलाएं सभी के लिए बड़ी आकर्षक हैं। और वहां से कुछ न कुछ संदेश हमें मिलता है। हमारे आचार्य बताते हैं कि वृंदावन में प्रतिदिन एक एक राक्षस आता था और भगवान उन सभी का संहार करते थे। और सबसे खास बात है कि भगवान उसके लिए किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं किए, भगवान अपने हाथों से ही मारे। जैसे आपको कथा पता होगी पूतना की, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी और अपने स्तन में विष लगाकर आई थी भगवान को। भगवान 3 दिन के थे, किंतु भगवान ने पूतना की इस हत्या करने की भावना को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसमें मातृत्व की भावना को स्वीकार किया। वो एक माँ बन के मुझे दूध पिलाने के लिए आई है, तो भगवान ने उनका उद्धार किया, उनके प्राण ले लिए। और श्रीमद् भागवत महापुराण ये कहता है कि उन्हें अपने धाम में, गोलोक वृंदावन धाम जिसे हम भगवान का स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, आध्यात्मिक संसार कहते हैं, वहां पर उन्हें आया का स्थान दिया। तो यहाँ आप देखिए कि भगवान का एक बहुत ही सकारात्मक स्वरूप दिखाई देता है कि भगवान आपकी प्रत्येक भावना को स्वीकार करते हैं। भगवान को परम सत्य कहा जाता है। परम सत्य का अर्थ है कि आप किसी भी प्रकार से अगर उनसे संबंध बनाएंगे, भले ही उनसे ईर्ष्या का भी संबंध बनाएंगे, अगर उनसे द्वेष रखने का भी संबंध बनाएंगे, भगवान उसको भी आनंद के साथ स्वीकार करते हैं और उस जीवात्मा को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जैसे शिशुपाल जो भगवान को गालियां देता था, 100 गाली देने के बाद भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन काट दी थी, किंतु उसकी आत्मा तुरंत निकल के भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई थी, तो भगवान ने उसको भी सायुज्य मुक्ति प्रदान की। तो भगवान के साथ जो भी संबंध बनाता है उसको भगवान अवश्य आनंद, सच्चिदानंद भगवान उसको प्रदान करते हैं, अपने धाम में जगह प्रदान करते हैं। उनके साथ अनेक प्रकार से संबंध बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे आपके जीवन में बहुत सारे संबंध है, आपके माता पिता के साथ आपका वात्सल्य रस में संबंध है, आपके मित्रों के साथ साख्य रस में संबंध है, और आपके जो और लोग होंगे दास्य रस में आपके साथ संबंध रखते हैं, शांत रस में संबंध रखते हैं, पति पत्नी जो होते हैं वो आपसे माधुर्य रस में संबंध रखते हैं। तो ये जो संबंध है ये आपको इस संसार में दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से भगवान से भी शाश्वत संबंध बनाए जा सकते हैं, ये श्रीमद् भागवतम हमें सिखाती है। तो भगवान की हर लीला में आपको कोई ना कोई संबंध मिलेगा जो उनके भक्त उनके साथ बनाते हैं। तो सबसे बचपन की सभी लीलाओं में आप जनरली देखेंगे उनके साख्य रस के बहुत सारे संबंध आपको दिखाई देंगे, उनके माधुर्य रस के गोपियों के साथ संबंध दिखाई

0: उनके वात्सल्य रस में भी उनके संबंध दिखाई देंगे। तो भगवान अपनी लीलाओं से इसी प्रकार से हमें कहते हैं कि आप मेरे साथ संबंध बनाइए, मेरे साथ मित्रता कीजिए, मेरे साथ किसी प्रकार का रिलेशनशिप बनाइए, मेरे पास आइए। जो अभी जेन ज़ी है वो बहुत ही उत्साहित है भगवान से जुड़ने के लिए, और अभी हाल के समय में हमने देखा है हम कभी कभी भजन जैमिंग करते हैं और भजन जैमिंग में जो युवा है बहुत उत्साह के साथ आते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और मैंने देखा है कि वे जानना चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, वे जानना चाहते हैं कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, वे प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, शास्त्र क्या है, शास्त्र इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हैं कि आप कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ आप क्या, आपका क्या संबंध है। तो आज का युवा मैं देखता हूं कि अपने जीवन से परे के प्रश्न पूछ रहा है, जीवन के बाद क्या, जीवन के पहले क्या था, ये प्रश्न के उत्तर आपको साधारण अपने स्कूल की किताबों में नहीं मिलेंगे। आप जब गीता खोलेंगे, भागवत खोलेंगे, तो उसमें इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर विशेष रूप से जो कोविड का समय था उसमें, क्योंकि लोगों ने देखा कि यह संसार पूरा नश्वर है, क्षणभंगुर जीवन है, हम सभी के परिवार में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई उस समय, तो लोग तुरंत ही आकर्षित हुए, यह तुरंत जानना चाह रहे थे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या मैं टेम्पररी में जस्ट पैदा हुआ, कुछ मैंने परिवार चलाया, जॉब की, पैसा कमाया, बुढ़ा हुआ, मर गया, क्या यही है केवल जीवन का सार, तो कुछ तो होना चाहिए जिसके लिए, कुछ तो परमानेंट होना चाहिए, ये तो सब टेम्पररी लगता है, सब कभी भी खत्म हो सकता है, तो वो परमानेंट ढूंढने के लिए आज के युवा आ रहे हैं जिससे उनको वास्तविक खुशी मिल सके, आनंद मिल सके। आज बहुत प्रेशर का समय है, कंपटीशन हर जगह है, हम तो कहते हैं कि भारत जो है बिल्कुल प्रेशर कुकर हो गया है, प्रत्येक व्यक्ति स्पेशली स्टूडेंट्स आप देखेंगे ना, तैयारी करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करवाते हैं सबको, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सबको कुछ करना है, तो भारत जो है पूरा प्रेशर कुकर की तरह हो गया है, और इसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है बहुत स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और ये भी एक एक्चुअली महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से युवा वर्ग आ रहा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका भी स्ट्रेस कम हो और जो टेंशन, डिप्रेशन, ये सब केसेस है ना, इन सब से छुटकारा मिले हमारी सोसाइटी को। और भगवान कृष्ण के संदेश की जहां तक बात है, तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी मुश्किलों से, पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, डरो मत। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक जीवात्मा को यह समझना चाहिए कि भगवान हैं मेरी रक्षा के लिए, भगवान कह रहे हैं डरो मत, तो अगर परिस्थितियां खराब भी होती हैं जीवन में, तो भी जीवन में किसी भी गलत निर्णय लेने से पहले ये संदेश देखना चाहिए, भगवद गीता देखनी चाहिए, भागवत पुराण देखना चाहिए, और वहां से समझना चाहिए वास्तव में ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है, तो किसी को भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, नकारात्मक विचारों की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए भगवान आए हैं, मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। जब आप कोई मशीन खरीदते हैं, जैसे आप घर में वॉशिंग मशीन ले, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, मैनुअल आपको ये बताता है कि ये वॉशिंग मशीन कैसे, इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करना है। इसी प्रकार से भगवद गीता और हमारे वेद शास्त्र ये हमारे जीवन का मैनुअल है, जो आपको बताते हैं कि कैसे अपने जीवन को चलाना है, तो इसी से हम सीख सकते हैं, यही भगवद गीता का सार है, यही भगवान का संदेश है।
1: अभी आप सुन रहे थे एक विशेष वार्ता कुशल विहारी दास की आवाज में। दो सौ 97.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। अगला कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में।

297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रही हैं आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल और कार्यक्रम जारी है गुलगुलशन, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त और होस्ट देविका।

अलीशा चेन्नई की आवाज़ में आप सुन रहे थे मेड इन इंडिया। और 90s के समय जब ये एल्बम रिलीज हुआ तो अलीशा चेन्नई तो बहुत ही खूबसूरत लगी रही थी, लेकिन उनके साथ ही ऑन स्क्रीन जो वीडियो बना था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। फिलहाल 90s के पॉप म्यूज़िक की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन थे। उन्हीं में से एक गीत जिसमें शाहिद कपूर नज़र आ रहे हैं, तो आइए सुनते हैं जयवालिया की आवाज़ में ये।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
1: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंग

0: की रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्ला सद्यक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण और अनुसंधान क्षमताएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जोड़ी को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:31 आप सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल और दोस्तों इस कार्यक्रम और चैनल को न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप सुन सकते हैं और दैनिक हिंदी पत्रिका कार्यक्रम दर्पण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्पण में सबसे पहले जन्माष्टमी के विषय में होगी बातें एक नज़र में। दोस्तों आज एक नज़र में जब बातें हो रही हैं जन्माष्टमी की तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक साथ प्रेम धर्म कर्म और मानवता के संदेश को याद करने का दिन है और इस दिन को हम सभी बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज के कार्यक्रम में विधि विधान और समाधान के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम और आप सभी को बता दें कि ये जो विशेष अधिनियम है इसे राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। 2013 में ये अधिनियम लागू हुआ और आपको बता दें ये कानून देश के करोड़ों लोगों तक पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण और सस्ती खाद्यान्न व्यवस्था पहुंचाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम के रूप में जाना जाता है और इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा को केवल सरकारी योजना के रूप में स्थापित न करना बल्कि कानूनी अधिकार के रूप में भी इसे स्थापित करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को संसद ने पारित किया था और इसे 10 सितंबर 2013 से प्रभावी माना गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य देश की बड़ी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्यान्न उपलब्ध कराना और खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और आपको बता दें कि खाद्य पदार्थ जो है वो हमारी बेसिक नीड्स में होती है तो इसलिए फूड यानी कि खाद्य का सुरक्षित और स्वस्थ अच्छा होना काफी ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:33 अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम और ये विशेष फीचर जो है आप कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर सुनेंगे। तो दोस्तों अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संभवामी युगे युगे और यह कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। तो आप सभी सुन रहे हैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल। इस चैनल पर अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संभवामी युगे युगे यह कार्यक्रम ये फीचर पुनः प्रसारित किया जा रहा है।

उदार चित्त वाले श्री हरि का नंद जी के यहाँ जन्म हुआ। नंद बाबा ने उत्साह पूर्वक नए परिधान धारण किए, माथे पर तिलक लगाया और हर्षोल्लास के साथ पूरे ब्रजवासियों को भगवान के जन्म के अलौकिक खुशी में शामिल होने हेतु निमंत्रण दिया।

उल्लसित नंद जी ने जीवात्माओं की पवित्रता और संतोष को ध्यान में रखकर स्वर्ण जड़ित सिंह, रजत जड़ित खुर और

भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर ब्रजवासियों की खुशी प्रकाष्ठा पर थी। लोग उनके सम्मान में जगह जगह गोष्ठियों में गीत गोविंद के रस में डूबे हुए थे। पूरा ब्रज इस बात की पुष्टि कर रहा था कि ईश्वर का दैविक आगमन हो चुका है। अतः लोगों ने अपने घरों को सुशोभित करना शुरू कर दिया। चौक चौराहों पर हर्षोल्लास का सम्मेलन उमड़ पड़ा। दीप प्रज्वलित हुए

ब्रजवासियों ने अपने पशुओं को हल्दी और तेल का लेप लगाकर नाना प्रकार के पुष्पों के साथ उनका श्रृंगार किया। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर आज मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु भी ईश्वर के आगमन पर हर्षित हो गए थे। मानो उनका पालनहार उनसे जुड़ने आ गया हो।

ब्रज के वासी नए नए परिधान के साथ उपहार लेकर नंद बाबा के यहाँ हाजिर हुए। उनकी खुशियाँ ऐसी थी जैसे वे अपने किसी प्रत्याशित इष्ट देव से मिलने जा रहे हों और उनकी प्रतीक्षा की अवधि समाप्त हुई हो। जिस तरह नारी अपने प्रियतम के आगमन पर 16 श्रृंगार करती है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर अपने मन में प्रेमानुभूति लिए ब्रजवासिनी स्वयं को आभूषित करने लगी।

गोपियां उत्साहित होकर उपहार लिए श्री कृष्ण को समर्पित करने हेतु द्रुत गति से उनके घर की ओर बढ़ने लगी। हीरे मोती स्वर्ण आदि से अलंकृत गोपियां नंद बाबा के घर में चहलकदमी करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने चिर परिचित प्रिय सखा से मिलने जा रही हूँ। ऐसा मनोरम दृश्य था जैसे मेघ घिर आया हो।

जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड ने एक नई ऊर्जा और उल्लास का अनुभव किया।

ग्रह, नक्षत्र और आकाश मंडल सभी ने इस दिव्य घटना को धारण किया और उनके स्वागत में उज्जवल हो उठे।

ब्रजवासियों ने दही, जल, घृत, दुग्ध आदि से एक दूसरे का अभिषेक करना शुरू किया। ऐसा लग रहा था इस खुशी

संरचना को और भी भव्य बना दिया। फूलों की यह बौछार भगवान की कृपा और आशीर्वाद का

अनंत है। जब अधर्म का विस्तार होता है और समाज में अराजकता फैलती है, तब भगवान स्वयं किसी रूप में अवतार लेकर

0: সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন। এখন খবর দিল্লি থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুকেশ কুমার। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का

0: सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहां कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन।

0: करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी सीएससी केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
2: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
3: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
2: And recovery efforts in the country.
1: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कही। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देश भर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
6: देश भर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या

0: है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश भर के नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद।

0: और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
1: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और छप्पन भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रास लीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है।
2: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 9 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत को हांगकांग के ली चेक यूर से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से तेज वर्षा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. 3-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Ministry says 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. Flood situation in Bihar remains grim as all major rivers are in spate. Relief and rescue operations underway in affected areas. Festival of Janmashtami been celebrated with religious faith and fervor across the country. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty enters men's double semi-final of China Masters. The 3-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Surya Kant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries, including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Our correspondent has filed this report.
4: Discussions were held for strengthening of judicial cooperation, technology advancement, integration.

0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली गणतंत्र के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार को नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्तों को मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। राजधानी वारसा में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है।
1: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धांडिंग में 60, तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हुई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों व उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल जैसे विषयों पर विमर्श हुआ। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मामलों के मंत्री प्रोफेसर फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने पेरिस में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में भारत की भागीदारी और बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में फ्रांस की भागीदारी पर चर्चा की।
3: बैठक के दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में भाग लेने और फ्रांस के साथ अंतरिक्ष साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में अंतरिक्ष विज्ञान, टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और सुरक्षित अंतरिक्ष पर ध्यान दिया जाएगा। यह अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय बातचीत और सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। भारत ने बाहरी अंतरिक्ष के टिकाऊ इस्तेमाल, अंतरिक्ष आधारित वैज्ञानिक डेटा की सुलभता, खुलेपन और अखंडता और फ्रीक्वेंसी प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन के निर्णायक ढांचे के समर्थन पर सम्मेलन के प्रस्तावित नतीजों का स्वागत किया। फ्रांस के मंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत और फ्रांस के मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने और उसे गति देने की फ्रांस की इच्छा व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत का दौरा करेगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार

0: समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता रणनीतिक खुलेपन, विश्वास और आपसी सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत करेगा। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एड्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत को हांगकांग के ली चैक यू से हार का सामना करना पड़ा। लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में आज रात अनहा सिंह का मुकाबला मलेशिया की शिव संगरी सुब्रमण्यम से होगा। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने कल बेल्जियम की नेले ग्लिस को 2-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, स्वच्छ कोयला और अंतरिक्ष के क्षेत्र में समझौतों पर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेशमा तिवारी विथ द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. 3-day BRICS Chief Justices Forum begins in New Delhi to deliberate upon contemporary issues concerning justice delivery and dispute resolution. Italian Prime Minister Giorgia Meloni thanks Prime Minister Narendra Modi for wishes, says India-Italy ties are stronger than ever. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and Poland working on agreements in cyber security, clean coal and space. 166 Indian nationals rescued in flash floods hit Nepal so far. 275 Indian nationals remain missing. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enters men's doubles semi-final of China Masters. The 3-day BRICS Chief Justices Forum has begun in New Delhi. The forum has brought together Chief Justices, Presidents of Supreme Courts and senior judicial leaders from BRICS member states and partner countries. As part of the forum, Chief Justice of India, Justice Suryakant, today held a series of bilateral meetings with heads of judicial delegations from various countries including Russia, China, the UAE, South Africa, Iran and Uzbekistan. Our correspondent has filed this report.
2: Discussions were held for strengthening of judicial cooperation, technology advancement integration for increasing efficiency of judiciary, enhancing people-to-people ties through expeditious judicial processes and best legal practices of different countries. The 3-day forum serves as a platform for participating judiciaries to discuss contemporary issues concerning justice delivery, international dispute resolution, technology and sustainable development while facilitating an exchange of views among judicial leaders. With Anupam Mishra, Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has commended the successful launch of

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतर कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि

बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।